एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून 2026। श्रोता, इस समय सुबह के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.94 MHz पर। 6 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागी

0: भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर को झुकाने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि जिस दिन जीवन से मैं शब्द निकल गया, प्रभु की समीपता का एहसास हमें अपने आप ही हो जाएगा। इसके लिए किसी प्रलोभन या चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है तो केवल भगवान के प्रेम में विश्वास की, क्योंकि जब उस तारणहार का दामन हमने पकड़ लिया तो फिर जीवन का उद्देश्य ही पूर्ण हो गया, किंतु परंतु के सारे सवाल अपने आप ही खत्म हो जाते हैं जब उनकी भक्ति की ज्योत हमारे मन में जागृत हो जाती है।

निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सबाए। हमें दूसरे लोगों की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। संसार में रहते हुए इंसान की ऐसी समझ विकसित नहीं होती, परंतु जब हम अच्छे संग में रहते हैं, संतों की संगति करते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है। फिर दूसरे लोगों की बातों को हम एक अलग ही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। प्रतिक्रिया को छोड़कर हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं। स्वीकार भाव में आते ही हमारा मन अहंकार से पिघलने लगता है और हमारा आत्मिक विकास होना शुरू हो जाता है। फिर हमें इस बात का विश्वास हो जाता है कि हमारे अंदर जीने वाला हमारा मन नहीं बल्कि परमात्मा है। हमारे सामने खड़े होने वाले व्यक्ति हार्ड मास का पुतला नहीं बल्कि परमात्मा का ही रूप है। ऐसी बात समझ आने पर अहंकार का पर्दा गिर जाता है। हमें दूसरों के अंदर दोष नजर आने बंद हो जाते हैं, बल्कि हम हर इंसान के काम को परमात्मा द्वारा दी गई भूमिका समझकर स्वीकार करते हैं और किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते।

प्रातःकालीन वंदना कार्यक्रम की इस आखिरी भक्ति रचना के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

अभी आपने श्री रामचरित मानस गान से भक्तिमय पाठ सुना और आज आपने सुना भाग 106। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 हुए हैं, आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। पहले 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। सात बजकर 10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा कार्यक्रम शुभ प्रयाग। समाचार प्रभात सुबह 8:00, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने। 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से कानून की बात रिले की जाएगी। सुबह 9:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। सुबह 9:18 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग 9:30 से 10:00 तक प्रसारित किया जाएगा। गीतों का कारवां, इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे सुबह 10:00। पहाड़ों के सुर, हिमाचली गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 11:00 प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे महक पंजाब दी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 11:30। दोपहर 12:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनो सखी, महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी। आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले पाएंगे 3:10 से शाम 5:00 तक, और शाम 5:00 समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, जिसमें 5:00 हिंदी में, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्याकालीन भजन आप सुनेंगे 5:10 पर। 5:30 पर युवा मंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नई उड़ान। शाम 5:55 पर कार्यक्रम विवरण के बाद शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजा गराई दिया। शाम 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सात 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम गरीब कल्याण रिले किया जाएगा। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे। रात्रि 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही कलाकार। 9:30 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। रात 10:00 से 11:00 तक आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। श्रोता ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य संपूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्

0: इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरंगस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुं उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्य मंत्रिमंडलस्य मंत्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभा सदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केन्द्रीय मंत्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आंध्र प्रदेशे, गुजराते तथा कर्नाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्य प्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखंडे द्वे आसने स्थः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचल प्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जून मासस्य अष्टादश दिनांके मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनांके भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। पञ्चाशदधिक ऊनविंशतिशततमात् वर्षात् सप्तत्यधिक ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294

0: सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5-9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening. The Myanmar president will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan from Raisen district in Madhya Pradesh today. The month-long campaign will continue till the 30th of June. The focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will expand his cabinet today. 35 new ministers will be inducted into the Council of Ministers. The swearing-in ceremony will take place at Lok Bhavan at 11 a.m. The fresh inductions will significantly scale up the Adhikari administration, which took charge the 9th of May with a core team of 5 cabinet ministers. With this expansion, the total strength of the state cabinet will rise to 41, strictly keeping with

0: सुबह सुहानी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। एक नए अंदाज में अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। हर रोज नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज की किरणें और हवाओं का बसेरा। हर रोज सुबह सुहानी लेकर आएंगे हम, जिसमें साथ होगा आपका और मेरा। कहते हैं हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया बदलाव अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो इसी बदलाव का आज हम और आप भी हिस्सा हैं। तो चलिए इसी बदलाव के लिए सुनते हैं एक सुविचार।
1: आज का विचार।
0: स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए, क्योंकि लाजवाब मोती कभी भी किनारे पर नहीं मिलते।

0: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, हर रोज हम नई नई जानकारियां हासिल करते हैं, तो इसी के अंतर्गत आज हम सुनेंगे खबर आज की।
1: खबर आज की।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश से खेत बचाओ अभियान का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारतीय महिला पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 10 पदक अपने नाम किए। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सिर्फ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मुगली वेंकट रमन ने स्वर्ण पदक जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हरा कर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। सुमन कल्याणपुर का आज 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो चलिए उन्हीं का गाया गाना ब्रह्मचारी फिल्म से आपको सुनवाते हैं। और इस गीत में उनका साथ दिया है मोहम्मद रफी ने।

श्रोता, हिमाचल के विभिन्न शहरों का आज का तापमान हम आपको बताएं तो उसकी बात में अगर करें तो राजधानी शिमला में 26.6 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 29.3, भुंतर में 29.5, कल्पा में 15.1 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 28 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 33.4 डिग्री, नाहन में 26.4 डिग्री सेल्सियस, केलांग में 18.7 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 25.5, मनाली में 21.2 डिग्री, कांगड़ा में 29.2, मंडी में 31.4 और चंबा में अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जाने माने संगीतकार वाजिद खान के संगीत से हर कोई रूबरू है। उनके संगीत शैली, विशेषकर उनकी मेलोडी और एनर्जेटिक बीट्स को आज भी हिंदी सिनेमा में याद किया जाता है। हम आपको बता दें कि 1 जून 2020 को यानी आज ही के दिन मुंबई के चेंबूर स्थित सुराणा अस्पताल में उनका निधन हो गया था और वे महज 43 वर्ष के थे। वे अपने बड़े भाई साजिद वाजिद की जोड़ी का हिस्सा थे। इस जोड़ी ने सलमान खान की कई हिट फिल्मों जैसे दबंग, वांटेड, प्यार किया तो डरना क्या में सुपरहिट संगीत देकर बॉलीवुड में खास मुकाम हासिल किया। वाजिद ने केवल संगीत ही नहीं दिया बल्कि कई शानदार गाने भी गाए हैं। हुड़ हुड़, दबंग, सोनी दे नखरे, चिंता ताता उनके कुछ गाए लोकप्रिय और हिट गीत हैं। तो चलिए सोनी दे नखरे सुनते हैं और आनंद लेते हैं सुबह सुहानी में इस गीत का।

सुबह सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र में। हर कोई अपने कामों में व्यस्त है और इस व्यस्तता में हर कोई अच्छा करना चाहता है। एक गृहिणी सुबह से शाम तक अपने घर को संभालती है, सबको चाहे छोटे हों बड़े हों बच्चे हों बुजुर्ग हों सबका ख्याल रखती है। अपना दी बेस्ट करने के लिए हर कोई कोशिश ही करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, अध्यापक हो, पुलिस अधिकारी हो या फिर कोई नेता या अभिनेता या अभिनेत्री। तो आज ऐसी ही दी बेस्ट अदाकारा की बात हम करेंगे। जी हाँ, भारत की बहुत ही खूबसूरत सी अदाकारा फिल्म अभिनेत्री नरगिस का आज जन्म दिवस है। तो चलिए उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपके संग साझा करते हैं। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था। उन्हें मुख्य रूप से 1950 और 60 के दशक की बेहतरीन अदाकारी और राज कपूर के साथ उनकी सफल जोड़ी के लिए जाना जाता है। नरगिस का जन्म कोलकाता यानी कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में 1935 में फिल्म तलाशे हक से अपना करियर की शुरुआत की। एक लीड अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली प्रमुख 1924 में बनी फिल्म तमन्ना थी। नरगिस ने अपने चार दशक के करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया, जिनमें से आवारा, श्री 420 और दीदार शामिल हैं। मदर इंडिया उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी। इसमें राधा का उनका किरदार इतना प्रभावशाली था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और ये फिल्म ऑस्कर में भी नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। कला के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान था और भारत सरकार द्वारा 1958 में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया। तो चलिए उसी फिल्म में से गाना सुनवाते हैं, यानी मदर इंडिया का गाना आपको सुनवा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, एक बच्चे के पैदा होने के साथ ही दो रिश्ते उनके सबसे खास होते हैं, एक माता और दूसरा पिता। उन्हीं के अंश से इस दुनिया को वो देखता है। माता पिता हर सुख सुविधा अपने बच्चे को देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। बस एक प्रश्न आपके बीच छोड़ रही हूँ कि क्या आज के बच्चे भी अपने माता पिता का उनके बुढ़ापे में उतना ही ख्याल रखते हैं जितना वो उनका बचपन में रखते थे? अगर इसका उत्तर हाँ है तो आज के दौर में इतने ज़्यादा वृद्धाश्रम क्यों हैं, ये भी एक प्रश्न है। विषय इतना दिल को छू लेने वाला है कि अगर हम इस पर बात करें तो कई घंटों भी कम पड़ेंगे। इस विषय पर हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। माता पिता का ये वैश्विक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ये दिन बच्चों के पालन पोषण और उनके विकास में माता पिता के निस्वार्थ

योगदान, बलिदान और प्रतिबद्धता को के सम्मान में मनाया जाता है। और श्रोता, इस बार का थीम है टुगेदर फॉर पेरेंट्स, यानी अभिभावकों के लिए एकजुट।

दूध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह अपनी चाय की चुस्की भी हम अदरक इलायची दूध वाली चाय के साथ करते हैं। दही लस्सी पनीर और न जाने कितने ही व्यंजन मिठाइयाँ दूध के प्रोडक्ट से बनती हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपसे ये सब क्यों कह रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज है 1 जून और आज के दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आहार के रूप में दूध के महत्व को पहचानना और डेयरी उद्योग की आजीविका और योगदान का जश्न मनाना होता है।

शुद्ध आज का वर्तमान कल का इतिहास बन जाता है, तो चलिए रूबरू कराते हैं कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियों के साथ। एक जून दिन सोमवार, आज के दिन देश और दुनिया में कई घटनाएं घटित हुई, जिसमें अप्पा शेरवा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार 2005 में सफल चढ़ाई पूरी की। पंजाब और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विलियम मेलखेलम हेली 1969 को आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह गए। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति 1996 को आज ही के दिन हमारे बीच नहीं रहे। ख्वाजा अहमद अब्बास, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक, आज ही के दिन 1987 को मृत्यु को प्राप्त हुए। भारतीय महिला क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ 1991 को आज ही के दिन जन्मी। आज जन्मदिवस है भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक कर्ण मल्लेश्वरी का, जो 1975 को जन्मी।

श्रोता, ये तो था कार्यक्रम सुबह सुहानी। सुबह सुहानी। सुबह सुहानी।

सुबह सुहानी कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 7:40 हुए हैं, हम हाजिर हैं अपने अगले प्रोग्राम शुभ प्रयाग के साथ।

दो कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, ये मुहावरा तो अक्सर आपने सुना ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे जगह की दूरी बढ़ती जाती है तो पानी के स्वाद में भी अंतर आने लगता है, और थोड़ी और दूर जाने पर वहाँ की भाषा में, बोलचाल में भी अंतर हो जाता है। तो ऐसी ही खूबसूरत सी मीठी सी बोली है हिमाचली, जिसमें हर ज़िले की एक अलग ही भाषा, अलग ही पहनावा, अलग ही रीति रिवाज हैं, लेकिन जो लोकगीत यहाँ गाए जाते हैं सबके दिलों में बसते हैं, चाहे भाषा किसी भी ज़िले की क्यों ना हो। तो चलिए आगाज़ कर रहे हैं शुपिया कार्यक्रम का इस गीत के साथ।

निर्मला कश्यप को अभी आपने इस लोकगीत में सुना। मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू में रचे बसे गीत आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। लीजिए सुनिए अब दयाराम धनवित।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश प्यार के गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएंगी।
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरम्भ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और

0: महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
6: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज़ महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सजी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसुर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

गाने सुहाने सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मिस्टर इंडिया फिल्म के इस गीत के साथ।

हवा हवाई गीत 1987 की सुपरहिट हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित और सदाबहार डांस नंबर है। यह गाना अपने बेहतरीन धुन, मज़ेदार बोल और दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के शानदार डांस मूव के लिए याद किया जाता है। और इस फिल्म के इस गीत को गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से कानून की बात रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में मैं हुकुम शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, भारत जैसे विकासशील देश में उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योग तभी सफल हो सकते हैं जब श्रमिक और नियोक्ता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हों, परंतु जब वेतन, सेवा शर्तों, छंटनी या बर्खास्तगी जैसे मुद्दों पर मतभेद होते हैं तो औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। इन्हीं विवादों को रोकने और सुलझाने के लिए अधिनियम बनाया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। आज इसी अधिनियम पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमने आमंत्रित किया है अनुजा सूद जी को। आप पीठासीन अधिकारी हैं श्रम न्यायालय। अनुजा सूद जी, स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका।
1: धन्यवाद।
0: औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, ये है क्या?
1: सबसे पहले श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मैं आकाशवाणी शिमला का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आज चर्चा के लिए बुलाया है। जैसा कि आपने पूछा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या है, तो यह भारत का एक केंद्रीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न विवादों को रोकना और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना है।
0: जी, तो जो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, इसकी शुरुआत की अगर हम चर्चा करना चाहें तो ये किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई?
1: जी, इस कानून का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक शांति, जिसे हम इंडस्ट्रियल पीस भी कहते हैं, बनाए रखना है और ये नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है ताकि ना काम रुके और दोनों पक्षों के हितों की रक्षा भी हो सके।
0: जी अनुरा सूद जी, औद्योगिक विवाद होते क्या हैं?
1: जी, धारा 2K के तहत कोई भी विवाद जो नियोक्ताओं और नियोक्ताओं या नियोक्ताओं और श्रमिकों या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच में हो और जो रोजगार, काम की शर्तों या श्रम की परिस्थितियों से संबंधित हो, उसे हम औद्योगिक विवाद मानते हैं।
0: जैसे कि इसके नाम से मालूम होता है या हम अनुमान लगा सकते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, तो क्या ये जो अधिनियम है ये 1947 में ही बना था, या जानना चाहेंगे कि ये अधिनियम कब बनाया गया?
1: जी, ये अधिनियम वर्ष 1947 में बनाया गया ताकि स्वतंत्र भारत में औद्योगिक शांति बनाए रखी जा सके और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ये भारत का एक केंद्रीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न विवादों को रोकना और उनका शांतिपूर्ण समाधान करना है।
0: औद्योगिक विवाद जो है, अगर इसकी हम परिभाषा जानना चाहेंगे तो क्या अभिप्राय है औद्योगिक विवादों से?
1: औद्योगिक विवाद वे विवाद हैं जो रोजगार, बेरोजगारी, सेवा शर्तों या काम की परिस्थितियों को लेकर श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न होता है।
0: औद्योगिक विवाद किन-किन के बीच हो सकता है?
1: औद्योगिक विवाद नियोक्ता और श्रमिक के बीच में या नियोक्ता और नियोक्ता के बीच में या श्रमिक और श्रमिक के बीच में हो सकता है।
0: तो ये भी हमें बताएं कि इस अधिनियम में जो, जैसे आपने कहा कि तीन नाम लिए आपने, नियोक्ता, श्रमिक, तो ये इन दोनों में से जो श्रमिक है वो किसे कहा गया है?
1: श्रमिक वो व्यक्ति है जो किसी उद्योग में वेतन के बदले शारीरिक, तकनीकी, लिपिकीय, कुशल या अकुशल कार्य करता है, वह श्रमिक कहलाता है।
0: तो क्या कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं?
1: जी हाँ, जैसे प्रबंधक हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उच्च वेतन पाने वाले पर्यवेक्षक हैं या पुलिस और सशस्त्र बलों के सदस्य हैं।
0: ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जिन संस्थानों पर ये अधिनियम लागू होता है?
1: जी, ये अधिनियम कारखाने, खदानें, बागान, परिवहन सेवाएं, औद्योगिक और वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
0: वर्क्स कमेटी जो है ये क्या होती है?
1: वर्क्स कमेटी श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की एक समिति होती है जो आपसी सहयोग सौहार्द बनाए रखने का कार्य करती है।
0: समझौता अधिकारी की भूमिका क्या रहती है?
1: समझौता अधिकारी को हम कंसिलेशन ऑफिसर भी कहते हैं। समझौता अधिकारी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करता है और अपनी रिपोर्ट इस बारे में सरकार को सौंपता है। जो ये समझौता अधिकारी होता है, इनका ज्यादा एंडेवर ये रहता है कि ये दोनों पार्टीज को किसी एक कंसिलेशन में, किस समझौते पे लाए, और जब समझौता नहीं होता है तो फिर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके बाद फेलियर रिपोर्ट के बाद रेफरेंस हो जाता है
0: जी
1: कोर्ट के अंदर।
0: जी जी अनुजा सूद जी, श्रम न्यायालय जो है यो किस प्रकार के मामलों का निपटारा करता है?
1: जी, जैसे सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी, हड़ताल, तालाबंदी की वैधता, अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि के जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा करता है।
0: औद्योगिक अधिकरण क्या है?
1: औद्योगिक अधिकरण वेतन, भत्ते, कार्य घंटे, अवकाश व अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
0: राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण कब गठित किया जाता है?
1: जब कोई औद्योगिक विवाद राष्ट्रीय महत्व का हो या एक से अधिक राज्यों से संबंधित हो।
0: हड़ताल क्या होती है?
1: हड़ताल, जब श्रमिक सामूहिक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो उसे हड़ताल कहा जाता है।
0: जी, तो हड़ताल और जो तालाबंदी है, तो ये दोनों क्या अलग अलग हैं? और अगर अलग अलग हैं तो फिर तालाबंदी क्या होती है?
1: तालाबंदी, नियोक्ता अस्थायी रूप से कार्यस्थल बंद कर देता है उसे तालाबंदी कहते हैं। और बहुत बार हम हड़ताल और तालाबंदी का अंतर समझ नहीं पाते, हमें इसे एक ही मतलब निकालते हैं, लेकिन हड़ताल और तालाबंदी दो अलग शब्द हैं और इनका लेबर लॉज में अलग मीनिंग है। हड़ताल ये श्रमिकों का अधिकार है, जब श्रमिक मिलकर काम करने से मना कर देते हैं उसे हड़ताल कहते हैं। और तालाबंदी ये नियोक्ता का अधिकार है और हथियार भी है, और जब मालिक अस्थायी रूप से कार्यस्थल को बंद कर देता है या काम करने से मना कर देता है तो उसे तालाबंदी कहते हैं।
0: लोक उपयोगिता सेवाएं क्या होती हैं?
1: वे सेवाएं जो जनता के दैनिक जीवन से जुड़ी हों, जैसे जल, बिजली, परिवहन, डाक इत्यादि।
0: लोक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल के क्या नियम हैं?
1: हड़ताल से पहले निर्धारित समय में पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है।
0: अवैध हड़ताल या तालाबंदी का क्या परिणाम होता है?
1: अवैध हड़ताल या तालाबंदी करने पर जुर्माना या कारावास का प्रावधान है।
0: जी, तो जो ले ऑफ है, ये क्या होता है?
1: जब नियोक्ता अस्थायी रूप से काम की कमी के कारण श्रमिकों को काम नहीं देता तो उसे ले ऑफ कहते हैं।
0: छंटनी से क्या तात्पर्य है?
1: जब अतिरिक्त श्रमिकों को स्थायी रूप से सेवा से हटाया जाता है तो उसे छंटनी कहते हैं।
0: छंटनी से पहले कोई क्या कुछ आवश्यक बातें हैं?
1: जी, इसकी पूर्व सूचना देना जरूरी है, मुआवजा देना जरूरी है और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी जरूरी है।
0: तो क्या कोई व्यक्तिगत श्रमिक विवाद भी उठा सकता है?
1: जी हाँ, बर्खास्ती, सेवा समाप्ति या छंटनी से संबंधित मामलों में व्यक्तिगत श्रमिक भी विवाद उठा सकता है।
0: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक शांति को बनाए रखना और श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच में संतुलित स्थापित करना।
0: क्या ये जो अधिनियम है, ये केवल श्रमिकों के हित में है?
1: जी नहीं, यह अधिनियम श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करता है।
0: इस अधिनियम का राष्ट्रीय विकास से क्या संबंध है?
1: औद्योगिक शांति से उत्पादन बढ़ता है, रोजगार सुरक्षित रहता है और देश का आर्थिक विकास भी होता है।
0: जसूत जी, अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए क्या रास्ते उपलब्ध हैं?
1: विवाद सुलझाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे कोई विवाद हो जाता है तो पहले वो वर्क्स कमेटी, जो कार्य समिति है, वो छोटे मोटे विवाद, जो आपसी विवाद होते हैं, वो वहीं पे सुलझाने का प्रयास करती है। इसके पास अगर मामला नहीं सुलझता तो फिर कंसलेशन ऑफिसर, जो सुलह अधिकारी हैं, उनके माध्यम से समझौता कराने की कोशिश की जाती है। और अगर वहां भी नहीं होता है देन लेबर कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल है, उसमें जब आपसी बातचीत विफल हो जाती है तब कानूनी रूप से उसका फैसला किया जाता है।
0: क्या कोई कंपनी जो है वो कभी भी अपने कर्मचारियों को निकाल सकती है कार्य से?
1: नहीं, इसके कड़े नियम हैं। यदि किसी संस्थान में 100 से अधिक श्रमिक हैं तो छंटनी या संस्थान बंद होने से पहले सरकार की अनुमति लेना और श्रमिकों को उचित नोटिस और मुआवजा देना अनिवार्य होता है।
0: अनुचित श्रम व्यवहार क्या होता है और इसके लिए क्या सजा है?
1: श्रमिकों को यूनियन बनाने से रोकना, डराना धमकाना या अवैध तरीके से काम से निकालना अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है। इसके लिए जुर्माना और 6 महीने की कैद दोनों का ही प्रावधान है।
0: क्या कोई मालिक अचानक काम के घंटे बदल सकता है या छुट्टी कम कर सकता है?
1: जी नहीं, धारा 9(1) के तहत अगर नियोक्ता सेवा की शर्तों, जैसे वेतन, काम के घंटे, छुट्टियां लेने में बदलाव करना चाहता है तो उसे श्रमिकों को 21 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। बिना नोटिस के किया गया बदलाव हमेशा ही अवैध माना जाता है।
0: जब कोई मामला लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाता है तो वहां फैसला कैसे होता है?
1: जब कोई मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष आता है तो दोनों ही पक्षों को अपना अपना पक्ष रखना होता है और उसके लिए सबूत देना होता है, जिसे ट्रिब्यूनल देखता है कि क्या सबूत आए हैं। और इसके पास दीवानी अदालत जैसी शक्तियां भी होती हैं और ट्रिब्यूनल का फैसला को अवार्ड कहा जाता है और दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से वो बाध्य भी होता है।
0: जी, तो हमारा जो श्रमिक वर्ग है आमतौर पर वो ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। अनुजा सूद जी, हमारे जो तमाम इस तरह के लोग हैं, कामगार लोग हैं, श्रमिक की श्रेणी में जो लोग आते हैं, अगर उनको कभी लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उनके लिए आप कोई साधारण सी बातें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवाएं और क्या उनको आगे के मतलब कदम उठाने चाहिए।
1: देखिए, जब भी कोई श्रमिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ अनुचित व्यवहार होता है या टर्मिनेशन हो रहा है या क्लोजर कर देती है कई बार कंपनी बिना किसी कॉम्पनसेशन के या नोटिस के बिना, या चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन कर देती है बिना नोटिस दिए, जिसके लिए कि 9A का नोटिस देना ज़रूरी होता है, तो इस तरह के मामलों में वो प्रबंधन को भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर वो प्रबंधन नहीं सुनता है तो जो लेबर ऑफिसर है, कंसलेशन ऑफिसर्स हैं, उनके माध्यम से अपनी डिमांड्स को उठा सकते हैं। और अगर वहां भी कोई कंसलेशन नहीं होती है तो फिर वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।
0: जी, तो कई बार ऐसा भी आपके सामने कई केसेस आते होंगे जब कोई श्रमिक कहीं कार्य कर रहा है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या कोई चोट वगैरह लग जाती है किसी को, और कई बार गंभीर चोट भी लग सकती है, तो उस स्थिति में भी क्या श्रमिकों के लिए कानून में कोई प्रावधान है जो उनकी सहायता करते हैं?
1: जी बिल्कुल, अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो एक तो ये ESI के माध्यम से सब कवर्ड रहता है, उनको खर्चा मिलता है, और चोट लग जाती है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए हकदार रहते हैं।
0: जी, और क्या महिलाओं के लिए कुछ विशेष अधिकार भी हैं? क्योंकि देखिए, पुरुषों और महिलाओं में अगर वो कामगार हैं, दोनों ही श्रमिक हैं, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं

0: चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन होता है या और कोई भी जिससे उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो इसको चैलेंज भी कर सकती है। और क्योंकि वो महिला है इसलिए उसे फ्री लीगल एड की भी सुविधा मिलती है, जो
1: जी
0: कि फ्री लीगल एड जो है वो जो भी कानूनी सहायता मुफ्त मिलती है उसके सारे प्रावधानों के अंतर्गत हमारे पास भी वो केस कर सकती है और उसको उसका लाभ भी मिलता है।
1: जी तो कार्यस्थल पर कुछ सुविधाएं तो महिलाओं को मिलती ही होंगी, जैसे अलग से टॉयलेट की सुविधा होना बहुत
0: जी जी
1: जरूरी
0: बिल्कुल,
1: है,
0: जी बिल्कुल,
1: इस तरह की
0: इस
1: कोई
0: तरह की,
1: तो
0: हाँ वो जो सुविधाएं बेसिक सुविधाएं हैं वो
1: जी
0: तो देना जरूरी ही है। जरूरत हो वहां क्रच की सुविधा भी देना महिलाओं को जरूरी है, वो
1: जी
0: प्रावधान इसमें एक्ट में है।
1: जी यानी जहां हमारे कुछ कर्तव्य हैं वहीं अधिकार भी है, उन अधिकारों का हम सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। अनुजा सूची, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आई और आपने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, इसी के साथ कानून की बात कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप कानून की बात कार्यक्रम सुन रहे थे। विषय था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। श्रीमती अनुजा सूद पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय शिमला से भेंट कर रहे थे डॉक्टर हुकम शर्मा। इसे आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। रास्तों से मंजिलों का फासला गिर कर नहीं संभल कर मिलता है, तो बिल्कुल संभल जाइए क्योंकि गीतांजलि कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ हम एक बार फिर से स्टूडियोज में हाजिर हो चुके हैं। और आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा।

श्रोताओं, बातचीत यूं तो शब्द ही हैं, पर की जाए तो दिलों की मैल धुल जाती है। तो बस देर किस बात की, हम भी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे और साथ ही में गीत संगीत तो बजता ही रहेगा। तो चलिए आनंद लेते हैं इस अगले गीत का।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: सुबह के 9:14 और 42 सेकंड गीतांजलि कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून इन किया है।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9:18 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और हम लौटेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद 9:30 पर।

0: आवाज बुलंद करे और एक स्वस्थ सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जिला परिषद वार्डों के लिए मतों की गिनती जारी, अभी तक 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित। मंडी जिला में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर और धर्मपुर से वंदना गुलेरिया चुनाव हारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी, आने वाले दिनों में मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में 17 में से 16, बिलासपुर में 14 में से 6, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 11 में से 9, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 19, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 12, लाहौल स्पीति में 10 में से 2, सिरमौर में 17 में से 12 और सोलन जिले में 17 में से 12 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला परिषद के नतीजों में अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सोलन नगर निगम में भाजपा की जोरदार जीत के बाद बीडीसी और जिला परिषद नतीजों में भी अधिकांश भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सलोगड़ा और मंसार पंचायत समिति वार्डों से निर्वाचित मनीष कुमार और कुमारी शीला ने अपनी जीत को मतदाताओं व कार्यकर्ताओं की जीत का करार दिया और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया।
1: मेरी जीत नहीं है, इस सलोगड़ा और मंसार के लोगों की जीत है। जो मैंने वादे किए हैं वो मैं पूरा करूंगा, हम मिलकर पूरा करेंगे। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, पूरी समस्याएं हम मिलकर उनका समाधान करेंगे।
2: देखिए, ये मेरी जीत नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने रात दिन मेहनत करी और पूरे जिला परिषद वार्ड की 19 पंचायतों का मेरे साथ दौरा किया।
0: उधर मंडी जिला परिषद के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर कोटली वार्ड से जिला परिषद का चुनाव हार गई है। इसी तरह धर्मपुर क्षेत्र के टिहरा वार्ड से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव हार गई है। वंदना गुलेरिया मात्र 47 मतों के अंतर से हारी, जबकि चंपा ठाकुर 2,464 मतों के बड़े अंतर से पराजित हुई। कुल्लू जिला परिषद के कुल 14 वार्डों में से अभी तक 11 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
3: कुल्लू जिला में जिला परिषद की 14 सीटें हैं, जिनमें देर रात तक मतगणना चलती रही, जबकि कुछ वार्डों के नतीजे सुबह घोषित किए गए। नतीजों के अनुसार जिला में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है तथा 8 भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि 4 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार तथा 2 आजाद उम्मीदवार हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाली सभी जिला परिषद सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं तथा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को यहां निराशा ही हाथ लगी है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: इधर सिरमौर जिला परिषद के कुल 17 वार्डों में से अभी तक 12 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
4: सिरमौर जिला में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद पर काबिज होने जा रही है। अभी तक जिला परिषद की 17 सीटों में से 12 सीटों के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। खास बात ये भी है कि सिरमौर जिला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को अपने गृह क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जहां अपने गृह क्षेत्र रेणुकाजी में जिला परिषद की 3 सीटें हार गए, वहीं दूसरी तरफ शिलाई में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह क्षेत्र में भी कांग्रेस को 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: किन्नौर जिला परिषद के कुल 11 वार्डों में से 9 के चुनाव नतीजे आ गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
5: जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही जिले की राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। जिला परिषद चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस परिणाम के बाद जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों का स्पष्ट बहुमत बन गया है। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी के
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिला परिषद के अब तक के घोषित परिणामों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम की धर्मपत्नी लीला देवी चुनाव जीत गई है। वहीं जिला के बख्तपुर वार्ड से इंदिरा कपूर विजय रही। इंदिरा कपूर ने जीत के बाद कहा कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी।
6: गुरुवार की जनता से यही कहना चाहूंगी कि आपने मुझे चौथी बार जो अपना प्रेम प्यार दिया है और इतने मतों से मुझे विजय बनाई है, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समस्याओं को हम धीरे धीरे निपटाने की बहुत कोशिश करेंगे। जैसे आप रोड्स का ले लो, जिस तरह से जिला परिषद के दायरे में बस आएगा उसी प्रकार से मैं अपने वार्ड का विकास करूंगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के नतीजे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत और सरकार की जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि प्रदेशवासियों ने विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने चुनाव में जीते सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने अपने क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता द्वारा व्यक्त विश्वास सरकार को और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों में वर्षा होगी। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
7: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी कई जिलों में गर्ज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 और 4 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। लगातार बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का असर काफी कम हो गया है। निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि पहाड़ी व ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आगामी 6 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने 4 नगर निगमों के चुनाव नतीजे से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, धर्मशाला, मंडी और सोलन नगर निगम में भाजपा को बहुमत, पालमपुर में कांग्रेस का परचम बरकरार। पंजाब केसरी के शब्द हैं, 3 नगर निगमों में भाजपा का राज, सिर्फ पालमपुर में कांग्रेस जीती। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, नगर निगम चुनाव में भाजपा आगे। दैनिक जागरण के अनुसार सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निगम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, HRTC चालक परिचालकों का अल्टीमेटम, आज वेतन नहीं मिला तो कल से नहीं चलेंगी निगम की बसें। मौसम पर हिमाचल दस्तक लिखता है, प्रदेश में 6 जून तक खराब बना रहेगा मौसम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जिला परिषद वार्डों के लिए मतों की गिनती जारी, अभी तक 150 से अधिक वार्डों के नतीजे घोषित। मंडी जिला में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर और धर्मपुर से वंदना गुलेरिया चुनाव हारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला परिषद, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी, आने वाले दिनों में मिलती रहेगी भीषण गर्मी से राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
8: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी गीत।

दोस्तों कई बार हम बड़ी उलझन में होते हैं, किसी से क्या बात की जाए क्या नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जरूर हमें बताइएगा। कहते हैं उलझनों में उलझकर बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। कई बार बात कुछ भी नहीं होती और समस्या खड़ी हो जाती है। फिलहाल समस्याएं हमने अपने तक और आप तक पहुंचने नहीं देनी है, क्योंकि सुरों के तार हमने छेड़ दिए हैं तो दिल को राहत जरूर मिलेगी।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून किया है। प्रोग्राम सुन रहे हैं गीतांजलि। कहते हैं वक्त पर किया हुआ काम जीवन को आसान कर देता है। हर रोज हर काम स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो सब बेहतर होता है। हर रोज यही ढर्रा यही रूटीन हम अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हम सेम रूटीन से भी उब जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है?

आज के समय में भी खुद को वक्त देना बेहद ज़रूरी है। हम किसी के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन खुद को शायद रोज़ ठगते रहते हैं कि चलो आज कुछ हम अपने मन की करेंगे। भाई थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, खुद को समय दें, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक घंटा अपने बारे में सोच कर देखें। फिलहाल आप ये सोचिए कि एक घंटा आपने अपने लिए कैसे निकालना है। तब तक अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं।

तो श्रोताओं, सोचा आपने किस तरह आप अपने लिए वक्त निकालेंगे? अगर ये सोचेंगे कि आज नहीं तो कल अपने लिए वक्त निकालेंगे, तो बता दें जनाब, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, किसी के लिए नहीं रुकता। ये समय बस समय के साथ लगातार बहते चले जाना है, चलते चले जाना है, नहीं तो ये समय आपको पीछे छोड़ देगा।

आज के गीतांजलि कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ पवन शर्मा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह और इसके लिए तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर का।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप आनंद लीजिए गीतों का, कारवा का। और अब आगे के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त प्रवेश।

हम हो गए आपके फिल्म के इस गीत के साथ करते हैं अपने कार्यक्रम का आगाज। इसमें आवाज दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन से ये गीत, जिसमें स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं देव कोहली और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म हम साथ साथ हैं से, जिसमें आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम प्यार तुम्ही से कर बैठे का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक ने और जिसके संगीतकार थे राम लक्ष्मण और साथ ही गीतकार थे इसरार इंसारी। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। आइए श्रोताओं, अब मिलकर सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण को फिल्म हम तुम पे मरते हैं का ये प्यारा सा गीत। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवा। अब समय हो रहा है 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं विक्रांत की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत सुनकर।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर। अगला सुर आप सुन रहे हैं सूरज सिंह का।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, जिसमें आवाज है राज की और सुरेश कुमार की।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में हुए जिला परिषद चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। अभी तक कुल 251 जिला परिषद वार्डों में से 229 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 136 वार्डों में भाजपा समर्थित जबकि 52 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं। 43 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक ऊना जिला में सभी 17, बिलासपुर में 14 में से 7, कांगड़ा में 54 में से 22, किन्नौर में 11 में से 9, कुल्लू में 14 में से 11, शिमला में 25 में से 20, हमीरपुर में सभी 19, मंडी में 36 में से 23, चंबा में 18 में से 12, लाहौल स्पीति में सभी 10, सिरमौर में 17 में से 10 और सोलन में 17 में से 14 जिला परिषद वार्ड सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला परिषद के नतीजों में अधिकांश जिलों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी हुए हैं। मंडी जिला परिषद के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर कोटली वार्ड से जिला परिषद का चुनाव हार गई है। इसी तरह धर्मपुर क्षेत्र के टिहरा वार्ड से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव हार गई है। वंदना गुलेरिया मात्र 47 मतों के अंतर से हारी जबकि चंपा ठाकुर 2,464 मतों के बड़े अंतर से पराजित हुई। चंबा जिला परिषद के अब तक 18 में से 12 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यहां घोषित परिणामों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसीराम की धर्मपत्नी लीला देवी चुनाव जीत गई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।

इस बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पंचायत समिति और जिला परिषद के सभी वार्डों के चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के नतीजे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत और सरकार की जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि प्रदेशवासियों ने विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने चुनाव में जीते सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने अपने क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता द्वारा व्यक्त विश्वास सरकार की और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों में वर्षा होगी।

0: विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी कई जिलों में गर्ज के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 3 और 4 जून के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में गरज चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। लगातार बारिश होने से हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का असर काफी कम हो गया है। निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि पहाड़ी व ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आगामी 6 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम महक पंजाब दी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजाबी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
4: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
2: जी,
4: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
2: जी।
4: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
2: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
4: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
2: जी।
4: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
2: जी।
4: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
2: जी।
4: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
2: जी।
4: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
2: जी।
4: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
2: जी,
4: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
2: जी।
4: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
2: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
4: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
2: जी।
4: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
2: जी।
4: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
2: जी।
4: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की, और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े, और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
2: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
4: बिल्कुल।
2: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
4: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
2: जी
4: है, ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
2: जी,
4: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
2: जी।
4: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
2: जी।
4: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
2: जी।
4: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
2: जी।
4: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
2: जी।
4: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
2: जी।
4: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
2: जी।
4: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
2: जी।
4: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
2: जी।
4: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
2: जी।
4: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
2: जी।
4: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
2: जी।
4: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
2: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
4: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
2: जी।
4: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
2: जी।
4: हैं, जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
2: जी
4: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है
2: बिल्कुल।
4: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की जी आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
2: जी,
4: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
2: जी।
4: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
2: जी।
4: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
2: जी।
4: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
2: जी।
4: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
2: जी।
4: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
2: जी,
4: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
2: बिल्कुल।
4: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
2: जी।
4: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
2: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं
4: जी। देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
2: जी।
4: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
2: जी,
4: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
2: जी,
4: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT

0: पार्टी सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से सीआईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर डीटीएच चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी प्रोफेसर भारती अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं।
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है गूगल पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईटी एनसीईआरटी आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी।
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है।
0: बिल्कुल आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी।
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी।
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं, दोपहर के ठीक 12 बजे और हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ। जी हाँ, कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए।

परदेश फिल्म से ये देशभक्ति गीत सैनिक साथियों अभी आपने सुना। दोपहर के 12:07 हुए हैं। फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं। राम लखन फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत के लिए संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और निर्देशन में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया ये दो गाना आपने सरगम फिल्म से सुना। अनजान के संगीत निर्देशन में अब लीजिए सुनिए शराबी फिल्म का ये नगमा, किशोर कुमार और साथी का गाया हुआ।
1: अरे मीना

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के ठीक 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

नमस्कार सखियों, पहाड़ों की ठंडी हवाओं, देवदार की खुशबू और हिमाचल की मीठी मिट्टी से सजे आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में मैं आपकी अपनी रेडियो सखी प्रवेश आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सखियों, हिमाचल सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों का नाम नहीं है, ये लोकगीतों की मिठास है, ये रिश्तों की गर्माहट है, ये संस्कृति की वो चादर है जिसमें प्यार, अपनापन और परंपराओं के रंग बड़े स्नेह से बुने गए हैं। जब पहाड़ों पर सुबह की पहली किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी वादी भगवान के रंगों से सज गई हो। कहीं मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, कहीं खेतों में काम करती महिलाएं लोकगीत गुनगुनाती हैं, तो कहीं कोई कलाकार अपनी पेंटिंग ब्रश के साथ हिमाचल की आत्मा को कागज पर उतार रहा होता है। और आज हम कार्यक्रम सुनो सखी में बात करेंगे हिमाचल की उसी अनमोल धरोहर की, जो सिर्फ एक कला नहीं बल्कि भावनाओं का संसार है। जी हाँ, कांगड़ा चित्रकला। सखियों, कांगड़ा चित्रकला का इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवशाली रहा है। 18वीं शताब्दी में जब राजा संसार चंद ने इस कला को संरक्षण दिया तो ये कला पूरे हिमाचल में नई पहचान बनकर उभरी। और उस समय में कलाकार महीनों तक एक ही पेंटिंग पर काम करते थे, छोटे छोटे ब्रश के साथ इतनी बारीकी का काम किया जाता था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। कहते तो ये भी हैं कि कलाकार पेंटिंग बनाते समय जो है ना, सिर्फ अपने हाथों से काम नहीं करते थे, उनकी आत्मा भी रंगों में उतर जाती थी। राधा कृष्ण के प्रेम को जिस कोमलता और भाव से कांगड़ा पेंटिंग में दिखाया गया है, वैसा संसार की बहुत कम कलाओं में देखने को हमें मिलता है। राधा कृष्ण का प्रेम, हरी भरी वादियाँ, नदियों का शांत बहाव, पेड़ों की लहराती डालियाँ पेंटिंग्स में इतना ओरिजिनल लगता है जैसे चित्र अभी ही बोल उठेंगे। फिलहाल हम अपने शब्दों को देते हैं विराम और सुनवाते हैं आपको प्रकृति से जुड़ा ये प्यारा सा गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण। कार्यक्रम सुनने वाली श्रोता सखियों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुनो सखी में, जिसमें आज हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं कांगड़ा चित्रकला की। सखियों, हिमाचल की प्रकृति खुद एक कलाकार है। यहाँ नदियाँ गाती हैं, पहाड़ कहानियाँ सुनाते हैं और फूल रंगों की भाषा बोलते हैं, और शायद यही वजह है कि कांगड़ा चित्रकारी में प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई दी है। चित्रों में बनी हर पत्ती, हर बादल, हर नदी मानो हिमाचल की सांसों से जुड़ी हुई हो। सखियों, कांगड़ा चित्रकला को पूरे विश्व में सराहा जाता है और कई विदेशी पर्यटक भी इसे सीखने हिमाचल आते हैं, और ये कला हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान भी बन चुकी है। क्या आप जानती हैं कि कांगड़ा चित्रकारी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? जी हाँ, वो है इसके रंग। इसमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी जो है वो प्राकृतिक तौर पर तैयार किए जाते हैं। सखियों, संस्कृति एक दीपक है तो महिलाएं उसकी लौ हैं। घर की माँ, दादी, नानी, बहन, यही तो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को संजोकर रखती है, कभी लोकगीतों के माध्यम से, कभी त्योहारों के जरिए, तो कभी कला के रूप में। सखियों, पहाड़ों की महिलाएं जो हैं वो दिन भर कठिन काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। उनकी सादगी, उनका धैर्य और उनका प्रेम ही हिमाचल की असली पहचान है। आज हमारे हिमाचल की कई बेटियां जो हैं वो कांगड़ा पेंटिंग सीख रही हैं, वो अपने सपनों में रंग भर रही हैं और साथ ही अपनी संस्कृति को भी जीवित रख रही हैं और इसे बनाकर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। कांगड़ा चित्रकारी हर उस महिला के जीवन में रंग भर देती है जो इसे अपनाती है। जो स्त्री घर पर चूल्हा चौका करती है वो भी इस कला में निपुणता प्राप्त कर रही है और देश विदेश में घूम रही है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सखियों, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस समाज की संस्कृति जीवित रहती है उसकी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, और हिमाचल की आत्मा बसती है यहाँ की लोक कलाओं, परंपराओं और लोक गीतों में। सखियों, संस्कृति किसी किताब के पन्ने में कैद नहीं रहती, वो हमारे गीतों में बसती है, हमारी बोलियों में मुस्कुराती है और हमारी कलाओं में सांस लेती है। कांगड़ा चित्रकला सिर्फ रंगों का मेल नहीं, ये हिमाचल के दिल की धड़कन है, ये हमारी पहचान है, हमारा गौरव है, हमारी विरासत है। श्रोताओं, जब भी आपको मौका मिलता है कांगड़ा पेंटिंग देखने का, तो सिर्फ उसकी सुंदरता मत देखिए, उसमें छिपे कलाकार के सपनों को महसूस कीजिए, उसमें बसे हिमाचल के प्रेम को महसूस करें। सारे हिमाचल की वादियों में सिर्फ प्रकृति ही नहीं बसती, यहाँ कला भी सांस लेती है। धर्मशाला से लेकर अंद्रेटा तक कांगड़ा की धरती आज भी रंगों में अपनी संस्कृति की कहानी कहती है। तो आइए अब हम आपको हिमाचल के उन खास जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ कांगड़ा कला आज भी जीवित है। सबसे पहले कोतवाली बाजार स्थित धर्मशाला में कांगड़ा आर्ट म्यूजियम, जो कि हिमाचल की संस्कृति और कला का बहुत बड़ा खजाना माना जाता है। उसके बाद शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है उसका नाम आता है, जो कि पालमपुर के पास अंद्रेटा गांव में स्थित है। नाम आर्ट गैलरी सिद्धवाड़ी धर्मशाला के नज़दीक स्थित है। ये गैलरी पारंपरिक और आधुनिक कला का सुंदर मेल प्रस्तुत करती है। इस गैलरी की सबसे अच्छी बात ये है कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम ये कर रही है। अब बात करते हैं सखियों महाराजा संसार चंद संग्रहालय की। ये स्थान कांगड़ा किला क्षेत्र में है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर राजा संसार चंद ना होते तो शायद कांगड़ा कला इतनी प्रसिद्धि नहीं पाती। और इसके अलावा हिमालयन आर्ट म्यूजियम धर्मशाला और कांगड़ा पेंटिंग रिवाइवल फोरम धर्मशाला भी है। तो सखियों, ये तो हमने आपको बताया कि आपको कहाँ कहाँ जो है कांगड़ा पेंटिंग देखने को मिल सकती हैं। यूं तो आज के समय में महिलाएं जो हैं वो बहुत तरक्की कर रही हैं और आपको बहुत जगह पर मिल जाएगा जहां आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन जो

सखियों, संस्कृति किसी मंदिर की मूर्ति की तरह होती है। अगर उसकी देखभाल ना की जाए तो समय की धूल जो है ना उसे ढक देती है, लेकिन जब हम अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं तो वो फिर से चमक उठती है। कांगड़ा चित्रकला सिर्फ हिमाचल की कला नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारे बुजुर्गों की याद है। सखियों, समय बदल रहा है और आज की नई पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में बिजी होती जा रही है। धीरे धीरे हमारी पुरानी कलाएं जो हैं वो पीछे छूटती जा रही है। अगर हम आज अपनी संस्कृति को नहीं संभालेंगे तो आने वाले कल में बच्चे जो हैं वो सिर्फ किताबों में ही इन कलाओं को पढ़ पाएंगे। तो सरकार द्वारा भी बहुत अच्छे प्रयास जो हैं इसके लिए किए जा रहे हैं। 2 से 3 महीने के कांगड़ा पेंटिंग के फ्री कोर्सेज जो हैं वो भी करवाए जाते हैं, जिसमें उन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो सखियों, आज के कार्यक्रम सुनो सखी में इतना ही। उम्मीद है कि हिमाचल की इस सुंदर कला यात्रा ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। अब चलने से पहले सुनवाते हैं आपको एक और आज का सुनो सखी का आखिरी गीत।

कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया विकास पठानिया ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए सुनो सखी। प्रवेश को दीजिए अनुमति।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53.50 रुपये तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: Nang, Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in the 73-kilogram category clinched gold medals. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

बिल्कुल सही जवाब आ गया। फिल्म कालीचरण का गाना अनुराधा पौडवाल, कंचन और साथियों की आवाज़ें, और ये भी बता दिया हमारे श्रोताओं ने, रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया है, प्रेमनाथ जी का नाम भी लिया है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि त्याग और समर्पण की सराहना, माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं, ये दिन उनके इसी निस्वार्थ भाव को मान्यता देने के लिए है। प्रथम गुरु माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे ही बच्चे को संस्कार और जीवन जीने के सही मूल्य सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं, काफ़ी बड़ा सा लंबा सा मैसेज है, हम छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अमूल्य छाया हैं जिनके स्नेह, त्याग और आशीर्वाद से हमारा जीवन संवरता है। उनका प्यार कभी नहीं बढ़ता, उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उनका स्नेह किसी नदी की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बहता रहता है। उनकी बातें, हिदायतें और स्नेह समय के साथ और भी अनमोल लगने लगते हैं। संसार में यदि निस्वार्थ प्रेम का कोई सबसे सुंदर रूप है तो वो माता पिता का प्रेम है। और आगे लिखते हैं कि आज वैश्विक अभिभावक दिवस पर ये इबारत माता पिता और अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी नहीं बढ़ता। वाकई एक संदेश है, आज का सुरीला सफ़र शुरू करने से पहले दो घटनाओं का जिक्र करना है। महान ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपुर का देहांत, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, होम शांति। महानायक शोमैन राज कपूर का आज स्मृति दिन है। उस आवारा छलिया अनाड़ी दीवाना कलाकार को अभिवादन। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सुरीला सफ़र पूरा करना है। इनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होगा, बटेगा नहीं। और फिर आगे इन्होंने गाने लिखे हैं, लेकिन हम बता दें कि आज जो जन्म तिथि है, आज है अभिनेत्री नरगिस की, और हम उन्हें याद भी करेंगे। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में आपने यादों की महफिल कार्यक्रम में कई गाने सुने, और सदाबहार नगमे भी आप सुनेंगे। आज का आज के फनकार भी आपने सुना था सुबह 9:30 पर, जो आधारित था सुमन कल्याणपुर पर। और अब कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ये गाना सुनिए और बताइए कि जो नायक है उनके हाथ में क्या है, ये आपको बताना है। और एक सवाल और है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने माता पिता के प्यार की बात की है। भाई कभी डांट भी तो पड़ी होगी या कभी अच्छी तरह से धुलाई भी हुई होगी, अगर याद हो, जिसे जिसके बाद आपने अपनी वो बात छोड़ दी जिसके लिए धुलाई या पिटाई हुई थी, तो वो भी हमें बताएं।

कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गाना उदित नारायण की आवाज़ में, और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत बताया कि फिल्म में आमिर खान इलेक्ट्रिक गिटार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भी हैं। एक श्रोता ने बताया है कि मेरी धुलाई 8वीं तक बहुत हुई है, खासकर तब जब गणित के सवाल नहीं बनते थे, पर जब 9वीं कक्षा में आई तो पापा ने एक दिन मेरे दोनों भाइयों और माँ को ख़ास तौर पर बोला था, अब इस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता ना जब ऐसे कहा जाता है, लगता सच में हम बड़े हो गए है ना। एक श्रोता कह रहे हैं, माता पिता ही तो हर एक जीवन के मूल में हुआ करते हैं, और वे अपने वैश्विक परिवार को वट वृक्ष की तरह न केवल पालते पोसते हैं, उनके पालन पोषण से अभिषिक्त हृदय ही तो भली भांति ही नहीं अपितु सुरहृत के साथ गाया करते हैं कि धरती मेरी, माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। वह अपने गीत की पंक्ति जो है बड़ी सुंदरता से पिरो दी। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि भाई चाचा चाची भाई भाभी भी तो होते हैं अभिभावक। बिल्कुल सही, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी कि बहुत बार बड़े भाई या बड़ी बहन बिल्कुल अभिभावक बनकर पालते पोसते हैं और बहुत सारी बातें उनसे साझा करते हैं और माता पिता से ज़्यादा करीब उनके हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उनके बारे में भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि जो हमने पहले पूछा था ना कि किस बात के लिए धुलाई हुई थी, एक श्रोता ने बताया, अगर आपको याद हो आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मम्मी पापा की तो पिटाई भी बहुत प्यारी होती है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं ना इस बात से। संदेश मिला एक श्रोता का, कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए विविध भारती पर, तुम तो सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब सुरीला सफर का नज़ारा देखने मिला, तब से पंछी बनूं उड़ता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूं प्रसारण तरंगों पर, दिल की गिरह खोलकर चुप ना बैठूंगा मैं, क्योंकि यहां कोई नहीं है अजनबी, मुड़ मुड़ के ना देखो मुझे, तुम मेरे पास आओ, VBS के साथ साथ गुजर जाए हर दिन, दिन हर पल गिन गिन साथिया साथ निभाना, साथी मेरे विविध भारती के राह में छोड़ ना जाना। बहुत सुंदर। आज की इबारत यही इंगित कर रही है कि ज़िंदगी का सब कुछ सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं। बेहद खूबसूरत इबारत है। आज विश्व अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता एक बेहतर कल के निर्माता हैं। इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हम सभी पर अपने माता पिता की शुभकामनाएं आशीर्वाद सदैव बना रहे। पर अब एक गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम क्या है और ये कौन सी अभिनेत्री गा रही हैं,

0: हमारे साथियों ने बता दिया, जाहिदा हुसैन अभिनेत्री नरगिस की भांजी थी, अनोखी रात फिल्म का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: तो भाई, माँ बाप की, माता पिता की जो डांट होती है वो भी बड़ी मीठी होती है, और उस मीठी डांट को याद करते करते और ये संदेश लिखते हुए ज़रूर हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, वो मुस्कुरा रहे होंगे। लिखते हैं, हम 6 भाई 3 बहनों का लंबा परिवार है, मैं 7वीं नंबर पर हूँ, अतः बचपन में डांट मार आम बात थी, चाहे बड़े भाई से हो या माँ से। हाँ, पिताजी ने कभी नहीं मारा। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बात बचपन की है, पिताजी ने गणित में भाग के कुछ सवाल स्लेट पट्टी पर लिखकर हल करने को दिए। उस समय गणित कमज़ोर था, 2 झपटे ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए। तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए। वाह, क्या बात है। एक और श्रोता बता रही है कि बचपन में माँ की साड़ी पहन के खूब खेल कूद कर गंदी करके रख दी, और जब माँ ने 3-4 तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो। एक और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने ही बड़ा किया है और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा। आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी ज़रा भी तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सच ऐसा ही होता है। एक और श्रोता ने बताया है कि शैतानियाँ तो बहुत होती थी, पर इन शैतानियों का सरताज भैया रहता था, बेचारा भैया को ही पड़ जाता था। माँ कभी किसी को नहीं मारती थी, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, उसके उस इमोशनल ब्लैकमेल के डर के मारे हम अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेते थे। बोलती थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरे मुँह से खून निकल आएगा। पता नहीं कैसे माँ समझ जाती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो मुंह में कुछ लाल रंग का चीज डालकर दिखा देती थी कि मेरे मुंह से लाल खून जैसा कुछ है, और हम भाई बहन डर के मारे उसे पकड़ के रोने लगते थे और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे। पिताजी गुस्सैल थे पर हम लड़कियों को कभी नहीं मारते थे। इसी जून में 2 साल पहले माँ भी चली गई। इन सब बातों को याद करके मन थोड़ा भावुक भी हो रहा है। बिल्कुल हो जाता है। एक और साथी बता रहे हैं कि हम लोग अपने पिताजी से बहुत डरते थे, उनका रौब घर में था, हमारी बुआ चाचा भी उनसे डरते थे, डांटने पर कभी भी उलटकर जवाब नहीं देते थे, माँ से हर तरह से बात कर लेते थे। हम लोगों की बहुत सी गलतियों के कारण हमारी माँ भी डांट खा जाती थी। अब माता पिता कोई नहीं है, अब कोई डांटने वाला नहीं है। सच ये बात बहुत कसकती है। एक श्रोता ने कहा है कि इबारत भावनापूर्ण पारिवारिक रिश्तों को चित्रित करती है और हमें बचपन के गलियारों की सैर कराती है। सही है।

0: माता पिता और पारिवारिक संरक्षण ही शैशव काल से उत्तरार्ध तक बौद्धिक शारीरिक नैतिक विकास में सहायक होता है। पुराने काल के संयुक्त परिवार बहुमुखी विकास का मुख्य कारक होता था, जहां चाचा चाची ताऊ ताई बुआ सभी के सानिध्य में बचपन गुजरता था। अब एकाकी परिवार का चलन और एक या दो बच्चों में सीमित परिवार रह गया है। भविष्य में मौसा मौसी बुआ शब्द शब्दकोश से लुप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बहुत भावुक विषय पर इबारत है। हाँ, है तो बहुत दिल को छूने वाली बात। तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं। बताइए कि आवाज़ किन की है और संगीतकार कौन है।
1: हंसना सीखो, हंसना।

जवाब आया हमारे श्रोताओं ने बताया, अंधा कानून फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश जब आए हैं तो पिटाई की बातें भी आई हैं। हमारे एक श्रोता ने कह रही हैं कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को मारते नहीं, प्यार से समझाते हैं। भाई हम लोग तो बिना मार खाए समझते ही नहीं थे। नई पीढ़ी को ये बात संभवतः अजीब भी लगे, पर इतनी मार डांट के बाद भी प्यार भी तो सबसे अधिक करते हैं। माँ पिता जैसा और कोई नहीं होता। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता कह रही है कि शादी के बाद माता पिता के साथ सास ससुर भी हमारे अभिभावक होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम बोला जाता है। तो आप बताइए ना, कुछ अगर आपके पास कोई अनुभव हो या उनसे जुड़ी कोई बात हो, उनके प्यार का कोई खास पल आपने अगर जिया हो तो उसे हमारे साथ भी साझा करिए। एक संदेश में कहा है कि पांचवी कक्षा में एक बार स्कूल से छुट्टी होते ही सहेली के घर चले गए थे। उस समय इस बात का अनुमान नहीं था कि घर पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता बढ़ने पर पापा जी स्कूल पहुंचे तो पता चला सब बच्चे चले गए हैं। 2 घंटे बाद जब घर पहुंचे तो माँ का गुस्सा पिटाई के रूप में मिला। थोड़ी देर बाद पापा जी भी घर आए। उन्होंने प्यार से समझाया कि पहले घर आओ फिर बता कर जाओ। ऐसा खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक धक धक होती है जब पिटाई होने वाली होती है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो बड़ी ही प्यारी होती है। एक श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देखकर ही रो देते थे। जब कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे, हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारी वजह से इसे डांट भी नहीं सकते। और कभी कभी जब हम शिकायत करते कि इसने रेडियो फेंक दिया, वो ख़राब हो गया, तो पापा कहते तुम बताओ हम क्या करें। एक श्रोता ने लिखा है कि मायके में माता पिता का साथ एक बेटी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संबल और सुरक्षा कवच होता है। ये वो सुरक्षित कोना है जहाँ बिना किसी शर्त के प्रेम, निस्वार्थ सहयोग और बचपन जैसी बेफिक्री मिलती है। मायके में माता पिता के सानिध्य के मुख्य पहलू, विवाह के बाद जीवन के हर उतार चढ़ाव में माता पिता की मौजूदगी एक ढाल की तरह काम करती है। सही बात है, उनके पास बिताया गया समय मानसिक शांति और ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने कहा है कि इंसान को पक्षियों की तरह उन्मुक्त होकर जीने, वर्तमान में रहने और प्रकृति के करीब रहने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं जीते, वे आज के हर पल का आनंद लेते हैं। इसलिए इंसान भी भविष्य के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। पक्षियों ने कभी अपने बच्चों को घोंसला बनाकर नहीं दिया, वो तो सिर्फ अपने बच्चों को उड़ने की कला सिखाते हैं। तनाव मुक्त रहने और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का नज़रिया पक्षियों की तरह ही होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अभिनेता कौन है।

0: फिल्म रात और दिन का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब के लिए बेहद बेहद ढेर सारा शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज़ खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नज़र आए थे। और अब संदेशों की बात हम करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मम्मी पापा घर में छुपा कर रख देते हैं, बाद में देते हैं, हमारे ही लिए रखते हैं, लेकिन वो छुपा हुआ ख़जाना ढूंढना उस समय बहुत एडवेंचरस लगता है, बड़ा रोमांचकारी लगता है। और कई बार वो ढूंढ भी लिया जाता है, और ढूंढने के बाद जब पता लगता है तो क्या होता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें ज़रूर बताएँ। एक श्रोता लिखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मार के डर से ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते यदि उनके सामने आवाज़ वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी, इसलिए आज हम भी अच्छे जॉब में हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं, बाबूजी दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। और एक संदेश है कि हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खा कर रोते थे, इतना रोते थे कि चुप कराने के लिए भी मार खाने के बाद चुप होते थे। क्या बात है। इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी के मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता हमें परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है, कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं, तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बना देता है। एक श्रोता ने बताया है कि हम जब मुंबई में रहते थे, फोर्थ क्लास में था, तो एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, मेन रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कार टैक्सी ने मुझे टक्कर मार दी, मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो टैक्सी ड्राइवर अंकल जी बहुत डरे हुए थे, वैसे गलती मेरी थी, दूसरे लोगों ने मुझसे पूछा कि घर कहाँ है, हम छोड़ दें, मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज़, मम्मी बहुत डांटेगी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊँगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना का पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और खुद ही रोने लगी, कहीं मुझे ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं। ये होता है माँ का प्यार, और मैं डर रहा था। तो अब वो खजाने वाली बात अगर याद आ रही हो तो जरूर बताएं, और बताएं कि इस फिल्म के गीतकार संगीतकार कौन हैं।
1: मुड़ के न देख

फिल्म श्री 420 के इस गाने के लिए सही जवाब आ गया। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। आशा भोसले और मन्ना डे के साथ साथियों की आवाज़ों में आपने ये गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था, उसके बारे में हमारे एक श्रोता ने बताया कि वोल्स धुन पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान, रात और दिन शंकर जयकिशन जी का संगीत, अकॉर्डियन खूबसूरत और तबले का खास चलन। और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे भेजे हुए बहुत सारे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है, कभी सास और बहू में कंकस नहीं होता, माँ बेटी की तरह सहृदय भाव से रहते हैं। ये भी जीवन का आनंद है, छोटी बातों पर कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए, झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति कटु वचन से अभाव बढ़ता है। एक संदेश में कहा गया है कि बच्चों के जीवन के पहले गुरु माता पिता होते हैं, जो अच्छे बुरे की परख से अवगत कराते हैं। बच्चों पर अपने माता पिता के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन सामाजिक तौर तरीके सीखने की शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, जहाँ माँ के आंचल की छाँव और पिता के प्यार से बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

आज की एक और संदेश में कहा है कि आज की इबारत की खास बात यह है कि गीतों को लेकर इसमें कुछ भी दबा छुपा सस्पेंस नहीं है। इबारत पढ़कर साफ साफ पता लग रहा है कौन कौन से सदाबहार सुपरहिट गीत बजने वाले हैं। कुल मिलाकर बहुत सरल और आसान समझ में आने वाली इबारत है। वैसे कुछ सस्पेंस हो तो और मज़ा है। तो चलिए, आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएँ और ढेरों बधाइयाँ। तो अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थीं।

चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे,

समान चली जाए, मारना दे टंक।

अंकल।

फिल्म बहारों के सपने का गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में आपने सुना। राहुल देव बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, और सही जवाब आ गया, आशा पारेख और राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। संदेश मिला है कि हमारे श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और शिष्ट पालन के आग्रही थे। सत्य की राह पर खुद चलते थे, हमें भी सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम सुखी हैं। और बचपन की यादें ताज़ा हुई मुड़ मुड़ के न देख गाना सुनकर, हमारे एक श्रोता की क्या बात है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पूरे घर में रुतबा चलता था। हम बच्चों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन थे वो बहुत विकासवादी। आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारी बुआ जी को स्कूल भेजा था, वो गांव से इकलौती थी स्कूल जाने वाली। क्या बात है, नतमस्तक हो जाते हैं हम ऐसे बुजुर्गों के सामने जो हमें विकासवादी सोच की तरफ के अपना दिखाते हैं कि विकासवादी सोच से क्या क्या बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, गाने को सुनिए और प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, साथ ही बताइए गीतकार और संगीतकार कौन है।

खजाना ढूंढने की बात को लेकर हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक बार हमारे नाना जी जब घर आए तो हम बच्चों के लिए टॉफी का पैक लेकर आए। माँ ने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उस पर लगा था, बहुत जतन किए गए पर सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन माँ हर बच्चे को उनके अच्छे काम के लिए जब उपहार स्वरूप टॉफी देती तो मन प्रसन्न हो जाता था।

फिल्म अवतार का गाना राजेश खन्ना, शबाना आजमी प्रमुख भूमिकाओं में थे। आनंद बख्शी ने गीत लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया था, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है तो कुछ संदेश जल्दी से। ना कोई दौलत ना कोई ख़जाना चाहिए, बस माता पिता का प्यार पुराना चाहिए। सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जीवन में जब उनका आशीर्वाद सिरहाना चाहिए। क्या बात है। दूध दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज़ सुबह आधा लीटर दूध केसर डालकर पीजिए और 5 किलोमीटर लंबी यात्रा कीजिए। ओहो। एक और श्रोता ने कहा है कि हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहां हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर संदेशों के लिए। हाँ, समय की कमी के चलते हम बहुत से संदेश नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर संदेश हैं और इन्हीं संदेशों के बीच में हमने ढूंढ लिया है प्यार और माता पिता का वो समर्पण और त्याग। तो अब इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। डीजे राजुल को इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आज है विश्व दूध दिवस। दूध की उपयोगिता और महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिन दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में मनाया जाता है। दूध के विषय पर सोचना शुरू करते ही यकायक मैथिली शरण गुप्त की रचना याद आती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है आंचल में दूध और आंखों में पानी। भले ही साथियों आज नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, लेकिन ये भी तो सच है कि नारी हर दुख हर दर्द को पीकर पूरे घर को समृद्ध करती है। अपने रक्त को दूध में परिवर्तित कर एक माँ अपने संतान को पिलाती है, उसे जीवन दान देती है। तो

हालांकि 1 जून यानी कि आज के दिन विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, पर भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, वही कुरियन साहब जिन्होंने भारत में सफेद क्रांति ला दी थी अपने ऑपरेशन फ्लड के नाम से, यानी कि दुग्ध विकास मिशन के माध्यम से। इस क्रांति ने केवल देश भर में दूध की उपलब्धता को आशातीत रूप से बढ़ावा ही नहीं, बल्कि बच्चों में कुपोषण को भी कम कर दिया और साथ ही साथ लाखों बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दिया।

आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए दिन में एक गिलास दूध भी किसी विलास से कम नहीं। सरकार की तरफ से कुपोषण के खिलाफ कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे, आखिर कौन सा कदम सफल हो सकता है। हम जागरूक रहे और कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा सबसे बेहतर योगदान दे। हमारे लिए जितना भी संभव हो, हम उन कुपोषित बच्चों को दूध पिलाकर उनका कुपोषण दूर करने में अपना योगदान दें।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
3: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
4: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
5: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
4: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
6: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 होगी। कोलकाता में 53.50 की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
8: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

अपनी सुरीली आवाज़ की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की यह आवाज़, साथ में मोहम्मद रफ़ी, बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में, शैलेंद्र की रचना थी और सलिल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज़ की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज़।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में सरती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सवारा है दत्ताराम ने।

सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज़ है सुमन कल्याणपुर की।

हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों

0: गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है।
1: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। वर्ष 1993 बैच के उत्तराखंड मूल के कमलेश कुमार पंत के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। के पंत ने कहा कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए एंटी चिट्टा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने सोलन में एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान शिक्षा विभाग के उप निदेशक गोपाल चौहान ने बताया कि ये अभियान जिले के सभी स्कूलों में चलाया जाएगा और विद्यार्थियों को चिट्टा सहित अन्य मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा।
2: एंटी चिट्टा जो कैंपेन है ये 1 जून से 20 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हमने जिले के सारे जितने भी जो ग्रेड 1 ऑफिसर हैं उनको 10-10 स्कूल अलॉट किए हैं। वो सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। वो सारे स्कूलों में जाएंगे और बच्चों से और स्टाफ से और SMC मेंबर से ये जो ड्रग्स के जो मेंटेनेंस है इसके बारे में जो है बातचीत करेंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे कि बच्चों से इंटरेक्शन की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ये ड्रग्स का जो ये इतना भारी प्रकोप हमारे प्रदेश में आ गया है ये क्यों आया, इसको रोकने के लिए बच्चों को जो परिवार से बातचीत करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स से कोई चीजें ना छुपाए और उनसे बात करें ताकि टाइम रहते ही इसको हम रोक सके।
1: होटलों, रेस्तराओं और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। व्यावसायिक LPG की कीमतों में ये वृद्धि अमरीका और ईरान में संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के मद्देनजर हुई है। असम के गुवाहाटी में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्र ग्रैपलिन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने खिलाड़ियों की इस अद्भुत सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता राज्य के युवाओं की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। राज्य में बीते 3 दिनों के दौरान हुई वर्षा, ओलावृष्टि व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में आगामी 6 जून तक अलग अलग स्थानों पर वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहेगा। विभाग ने 3 से 6 जून तक राज्य के 6 जिलों में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
4: कृषि विकसित भारत के विजन में एक आधारभूत स्थान रखती है। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने 4.45% की दर से वृद्धि दर्ज की है, जो पूर्ववर्ती दशकों की तुलना में सर्वाधिक है। इस परिवर्तन के केंद्र में बागवानी है, जो भारत की उच्च मूल्य फसल अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उभरी है। फलों और सब्जियों से लेकर फूलों, मसालों और बागान फसलों तक बागवानी ग्रामीण परिदृश्यों को रूपांतरित करती रही है। पारंपरिक मुख्य फसलों के विपरीत उच्च मूल्य वाली बागवानी

0: बनी फसलें प्रति इकाई भूमि पर अधिक प्रतिफल उत्पन्न करती हैं और कृषि सकल मूल्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत में कृषि के विकास के प्रेरक के रूप में बागवानी क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कृषि फसल उपक्षेत्र के सकल मूल्य उत्पादन में लगभग 37% योगदान देता है और भारत के कृषि विकास की दिशा में एक आधारशिला के रूप में उभरा है। उत्पादन में निरंतर वृद्धि इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को रेखांकित करती है, जो न केवल समग्र कृषि उत्पादन में बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था के भीतर मूल्य संवर्धन में भी परिलक्षित होता है। बागवानी क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति इसके रणनीतिक महत्व को और सुदृढ़ करती है। देश सब्जियों, फलों और आलू के उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में फलों का योगदान 9.18% तथा सब्जियों का योगदान 8.18% है। केंद्रीय बजट 2026-27 ने उच्च मूल्य कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विशिष्ट क्षेत्र आधारित भिन्न रणनीति पर बल दिया है, जो कृषक आय बढ़ाने और उत्पादन प्रणालियों में विविधता लाने की इसकी क्षमता को स्वीकार करता है। नारियल क्षेत्र भारत की बागवानी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो लगभग 3 करोड़ लोगों, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल है, की आजीविका का समर्थन करता है। भारत नारियल उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 22.44% योगदान देता है तथा खेती के क्षेत्रफल के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है, जो विश्व के कुल नारियल क्षेत्र का करीब 19.32% है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत नारियल विकास बोर्ड ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नारियल की खेती तथा संबंधित उद्योगों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नारियल प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और कम उपज देने वाले पेड़ों को उन्नत पौधों और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। भारत में काजू और कोको की खेती के संगठित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। बादाम एक अन्य उच्च मूल्य समितोषण मेवा फसल है, जो विशेष रूप से हृदय संबंधी तथा पाचन स्वास्थ्य के लिए अपने पोषण व स्वास्थ्य लाभों के कारण व्यापक रूप से पहचानी जाती है। बागवानी सांख्यिकी इकाई कृषि व किसान कल्याण विभाग के अनुसार भारत में वर्ष 2024-25 में बादाम का उत्पादन करीब 14,000 मीट्रिक टन रहा, जिसकी खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में केंद्रित है। जम्मू कश्मीर देश के कुल उत्पादन में 83% से अधिक का योगदान देता है तथा कश्मीर क्षेत्र में प्रमुख प्रसंस्करण और विनिर्माण केंद्र स्थापित हैं। हिमालयी क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण मेवा फसल चिलगोजा है, जो अत्यंत मूल्यवान चिलगोजा पाइन नट्स का उत्पादन करती है। इसे अक्सर चैंपियन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स कहा जाता है। ये फसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनजातीय समुदाय की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चिलगोजा पाइन उत्तर पश्चिमी हिमालय की आंतरिक शुष्क घाटियों में उगता है, जहां कम वर्षा और भारी शीतकालीन हिमपात जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिससे ये प्रजाति पारिस्थितिक रूप से अनुकूल होने के साथ साथ स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन जाती है।
1: सामयिक चर्चा में आज विषय था भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था। आकाशवाणी का ये शिमला,
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
3: इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
4: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

0: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौटकर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
2: तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
1: तो गाली क्यों देते हो?
2: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
1: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
2: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
1: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
2: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
1: सभी को होता है, मुझे भी है।
2: अपने को अभागिनी समझती हो?
1: हूँ ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता?
2: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
1: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
2: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु के खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
3: यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
4: अच्छा,
3: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है, कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
2: गहने बनवाता था कि नहीं?
3: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
2: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
4: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
2: हाँ, है तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
4: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
2: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
4: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
5: अच्छा,
4: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोच कर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
3: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों दत्ते रे लालची?
4: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
0: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
2: अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
0: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
5: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
6: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
7: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
6: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
8: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
6: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
8: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
6: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
9: हाँ तो मंज जी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
10: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
9: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
10: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
9: शुभकामनाएं
10: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
9: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा फेसबुक पेज पर। आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खासतौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहे, सभी सखी और सखा तैयार होकर
10: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर
9: कल
10: आएंगे बर्थडे मनाने।
9: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है जी। और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीज़ों के आसपास होते हैं ना, तो ज़िंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज़ होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और
0: ना?
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं, और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना?
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना? तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं
0: ये
1: नहीं।
0: वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव हैं जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है, उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो घर बच्चे देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे, तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं चलता था।
1: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे, कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो, तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
1: और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना, दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है। पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
0: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले
1: जी।

0: हाँ
1: तो देखिए, अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई, तो तबीयत खराब हुई, तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबीयत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
1: नहीं होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है। आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता, और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे, हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर, या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, हाँ। आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को
0: पिला सकते हैं। खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मंगौड़ी एक कप,
0: आलू चाहिए आधा कप
1: आलू, हाँ। 2 लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आँच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढक कर धीमी आँच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होते हैं और मेरी तो बहुत फेवरेट है मंदा।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखी, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीज़ें ले सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊँगी हो सकता है आप उसे ज़्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें, एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं

0: पतला करना है ना, बेलना नहीं है, एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्ठी की दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें पाँच छः, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें, और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो स्वाद लें।
1: जी, गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती कार्यक्रम।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश

0: तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
0: ठीक है,
1: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
0: हाँ जी,
1: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
0: सही है,
1: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
0: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है, और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह, जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
1: अच्छा,
0: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है,
1: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
0: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे, उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना वो पेरेंट्स का काम है।
1: जी
0: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
1: पेट में
0: जाएंगे, तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज मैं बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स आल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए।
1: जी,
0: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है

0: जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गॉज होता है, गॉज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गॉज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गॉज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गॉज पीस को पानी में डुबा के गीले गॉज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों के लिए
0: एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके एक या दो दांत या चार दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
1: बिल्कुल
0: उसके जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि दांतों में बनने वाले कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें।
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो,
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है, बाहर इजिली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना हो, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक, उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो

0: लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते
1: लेकिन
0: हैं।
1: नस तक,
0: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
1: जी।
0: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
1: जिसकी हमने चर्चा की।
0: एग्जैक्टली,
1: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
0: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
1: हाँ।
0: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
1: ये बहुत खतरनाक है।
0: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
1: अच्छा।
0: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता
1: हो, होता है। हाँ।
0: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
1: सेम बात है,
0: सेम बात यहां पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहां पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं करी, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम होंगे। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन हड्डी जो होता है जबड़े का उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेकर आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। सो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि दांतों में दर्द होता है तो नैनो से तो सावन बरसना ही है।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: Yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: Yes.
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे,
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने।
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो।
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल।
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे, तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: Exactly.
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी
1: है। Exactly. मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊं,
0: हाँ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ।
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: यस।
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है। पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए, और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें, ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
0: बिल्कुल,
1: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
0: इसके
1: पा
0: बिना
1: रहा
0: भी चल सकता है,
1: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी डेढ़ गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, एक डेढ़ दो महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था डेढ़ दो महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
0: अच्छा,
1: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
0: ओके,
1: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
0: तो वो
1: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
0: ओके,
1: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
0: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
1: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
0: ठीक बात है,
1: इतनी सी बात होती है। पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है, और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
1: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
0: जी,
1: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
0: तो हमारे लिए भी गाइए।
1: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
0: जी।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों की अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
0: ओके।
1: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है। अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है।
0: ओके।
1: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है, तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
0: जी,
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना। वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो, लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है। वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है।

0: के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनस से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनस से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनस पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट। बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, सेम ही आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो, तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अनटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो, या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है, और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है। उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है। तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है,
0: हाँ जी,
1: इसकी बात करते हैं, और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
0: दांतों
1: नहीं
0: की बीमारी नहीं है।
1: ओहो,
0: ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए। अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका
1: तो
0: सपोर्ट जाएगा,
1: यस,
0: तब दांत हिलेगा।
1: तो हड्डी मामला है।
0: एग्जैक्टली, वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी 4 स्टेजेस है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है, उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं, स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं, तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस। दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है, तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया, तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड 1 वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं, वो आगे चल के मुंह से बदबू आना।
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन है।
0: एग्जैक्टली, ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो। अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं।
0: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो।
1: जी,
0: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से।
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए। बोले शुक्रवार को गिरे हैं। मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो, तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू, स्मोकिंग,
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की,
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। 25-30 साल की उम्र है, लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
1: बिल्कुल।
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।
1: बिल्कुल,
0: ये सजेशन मैं यहां दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है। तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह, पर हम वफा करना सीखे
0: क्योंकि आपने करना सीखे।
1: एग्जैक्टली, क्या बात है, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमिडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है,
0: जी,
1: आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes,
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर। क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
0: बहुत जल्दी होने लगा ये,
1: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
0: बाकायदा,
1: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
0: और वो महंगी चीज है।
1: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
0: एक दांत का,
1: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120-130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5-15 का।
0: बहुत कम है,
1: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110-115 तक।
0: इक्विवेलेंट है,
1: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो,
0: पर इम्प्लांट बहुत महंगा,
1: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
0: जी,
1: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
0: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
1: Exactly.
0: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
1: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज क्यों, क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच सर।
0: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन आउ लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.

0: दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anucha Kumar. Prime Minister Narendra Modi and visiting Myanmar President U Me Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues, including trade and economic ties, defence and security, border management, as well as regional situation. Briefing media in New Delhi after the talks between the leaders, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. He said both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu this evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit the Light and the Lotus, Relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. The exhibition is showcasing the revered sacred Piprahvar relics associated with Gautam Buddha, along with significant associated antiquities. President Hlaing will travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has said that India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, which was signed 6 months ago, has come into force from today. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that CEPA is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% 20% of India's export.

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

0: सकते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम युवा मंच और मैं हूं आपका होस्ट गौरव राय, जिसमें हम नई उड़ान कार्यक्रम लेकर आए हैं और हम मिलवाते हैं आपको ऐसे युवाओं से जो अपने हुनर, सोच और मेहनत से समाज में एक अलग पहचान बना रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे युवा लेखक जो खूबसूरत कविताएं लिखते हैं और साथ ही इतिहास विषय में PhD भी कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान शिवा पंचकरण जी का।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद यहाँ आकर। सबसे पहले अपने बारे में श्रोताओं को थोड़ा बताइए।
0: बताने के लिए ऐसा तो कुछ खास है नहीं। विद्यार्थी हूँ, अपने इतिहास, संस्कृति और कविताएं, साहित्य, इन सबके साथ एक गहरा जुड़ाव है, लगाव है, इनसे प्रेम है और इन्हीं के ऊपर जानने की इच्छा रहती है, सीखने की इच्छा रहती है और उससे कुछ निकल कर आता है तो उसको कविता कह देते हैं या कई कई बार उसे कहानी कह देते हैं। बाकी कुछ खास ऐसा बताने लायक मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अगर कुछ खास बताने लायक होता तो शायद बताना नहीं पड़ता।
1: जी, बहुत ही बढ़िया बात है। और आपसे एक ये है कि कविता लिखने की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई?
0: कविता लिखने की शुरुआत कोई ऐसी बहुत प्यारी सी कोई कहानी हो या कोई बड़ी घटना हो जिससे जीवन बदल गया, मुझे लगता है ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं महापुरुषों के जीवन में ही होती हैं। जैसे गांधी जी के जीवन में उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया था और फिर वो गांधी जी बने। मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है, बहुत सरल सी सरल सा जीवन है। जो मुझे बहुत हल्का सा ध्यान है कि लिखने का शौक शायद बचपन से ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब मैं धर्मशाला आया था तो उस और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, आप कह सकते हैं कि उस और थोड़ा ध्यान देना मैंने ज्यादा शुरू किया था। तो ऐसी कोई सच कहानी नहीं है, बस किसी दिन किसी रोज माँ सरस्वती की कृपा हुई होगी और कलम उठी होगी, उससे मैंने कुछ लिखा होगा। पहले कुछ अच्छा लिखा होगा, थोड़ा और उसको निखारने का प्रयास किया होगा, फिर बाद में उसको कविता कहना शुरू कर दिया तो वो कविता हो गई होगी।
1: जी जी, इतिहास और कविता की बात करें तो दोनों अलग अलग क्षेत्र माने जाते हैं, फिर भी आपने इसे साथ ऐसे रखा, कविता और इतिहास?
0: ये क्षेत्र अलग अलग माने जाते हैं पर ये अलग अलग क्षेत्र हैं नहीं। आज जितना भी इतिहास हम जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो किसी समय जो है वो साहित्य और उसी साहित्य से निकाल कर इतिहास जो है वो बनता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इतिहास में भावना जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, क्योंकि आपको न्यूट्रल रहना है। हालांकि इतिहास कभी न्यूट्रल हो नहीं पाता है, लेकिन न्यूट्रल रहने की आप एक कोशिश करते हैं और उस कोशिश में भाव शून्यता जो है इतिहास देखने को मिलती है। और साहित्य जो है वो भावनात्मक प्रक्रिया है, भावनात्मक संसार है, उसमें भावना होती है, प्रेम है, विरह, ये सब कुछ इतिहास में भी होगा लेकिन उसमें भावना कम होगी। लेकिन कविता में ये सारे के सारे भाव जो है उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगे। तो ये दोनों अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा साहित्य अच्छे इतिहास को जन्म देता है, अच्छे इतिहास को शेप देता है। जितने अच्छे से किसी साहित्यकार ने, किसी लेखक ने उस समाज का विवरण दिया होगा, उस बहुत अच्छे से समाज को समझाया होगा, उतने ही अच्छे से आपको बाद में इतिहास जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज जो कवि हैं, कहानीकार हैं, वो कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, जितने अच्छे से आज के समय को वो लिखेंगे अपनी कलम से, जितना अच्छा समाज का चित्रण करेंगे। अब जब समाज का अच्छा चित्रण कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल समाज की अच्छी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, लेकिन बुराई को लिखना, समाज की बुराई को लिखना, समाज में जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको भी बड़ी सुंदरता से लिखना। जितनी सुंदरता से एक साहित्यकार लिखेगा उतना ही अच्छा जो है आगे चलकर इतिहास बनेगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो साहित्य और इतिहास अलग नहीं है, एक है, और शायद इसीलिए मेरी रुचि जो है दोनों में रही है। दूसरा, इतिहास के साथ भी और लिटरेचर के साथ भी संस्कृति का एक बड़ा गहरा जुड़ाव होता है। कवि जो होता है वो आप कह सकते हैं कि कहते हैं समाज का दर्पण होता है, तो वो समाज के बारे में, उस समाज की जानकारी, अपने आसपास की संस्कृति और जो उसका सामाजिक परिवेश है, उस परिवेश से ही उसको लिखने की प्रेरणा आती है, उसको लिखने के लिए आइडियाज आते हैं। तो वो इसीलिए, और सेम इतिहास में भी संस्कृति का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत इम्पैक्ट करता है इतिहास को। तो ये दोनों चीजें जुड़ी होती हैं। तो इस जुड़ाव के कारण मैं दोनों के साथ जुड़ा रहा हूं और यही आप कह सकते हैं कि इसीलिए साहित्य और इतिहास दोनों में मुझे आनंद आता है। वो कहानियां ही साहित्य और इतिहास लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: जी जी, तो शिवाजी आपकी कविताओं की बात करें तो आपकी कविताओं में सबसे ज्यादा कौन से विषय, किस प्रकार के विषय होते हैं?
0: देखिए, जब हम कहानी लिखते हैं उसमें थोड़ा सा लिखने वाले के पास स्वतंत्रता ये होती है कि वो बैठकर सोच पाता है कि किस विषय पर ज्यादा फोकस करेगा। उसमें पर्यावरण ज्यादा आने वाला है, सामाजिक कुरीति को वो ज्यादा बताने वाला है, बाद में विद्वान उसे से बहुत कुछ निकालते हैं, बाल की खाल उतारते हैं, लेकिन जब लिखने वाला जो व्यक्ति है, और ये मेरा व्यक्तिगत कहना है, हो सकता है जो वरिष्ठ लोग हैं, विद्वत जन हैं, वो इससे इत्तेफाक ना रखे हो, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि कहानी में आपको एक स्वतंत्रता रहती है, आप विषय का चयन करते हैं, लेकिन कविता जो है वो स्वतः आती है। आप कहानी के लिए प्रयास करते हैं, एक लंबा समय सोचते हैं, विचार करते हैं, विचार करने के बाद कहानी निकलती है, लेकिन कविता जो है वो स्वतः आती है आपके अंदर से। हो सकता है आपने बहुत लंबा सोचा हो, उसमें विज्ञान के जो लोग हैं वो अच्छे से बता पाएंगे कि किस प्रकार से ये मनुष्य का जो दिमाग है किस प्रकार से काम करता है, लेकिन भावनात्मक मंच पर उस पर देखा जाए तो कविता स्वतः आती है, स्वतः एक विचार आता है और उस विचार को आप कह सकते हैं जैसे ऊन के धागों को आप पिरोते हैं, वो जो ताना बाना बनता है, तो वो ताना बाना कविता है। तो आप ऐसा किसी विषय में बंद कर यही विषय मैं लिखता हूँ, वैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रेम पर, विरह पर, पर्यावरण पर, सामाजिक स्थितियों पर, कई बार राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं उन पर लिखने में आनंद आता है। तो जब जो मन में आता है तो स्वतः ही कविता एक रूप जो है वो ले लेती है।
1: तो आपसे एक सवाल और है कि आपको क्या याद है कि आपकी जो पहली कविता कौन सी थी?
0: पहली कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा हल्का सा याद है कि मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था तो एक कहानी लिखने की कोशिश की थी, और उसमें मुझे बड़ा हल्का सा याद है कि खजाना लेकर जो कहानी के पात्र हैं वो लेकर जा रहे हैं और वो नाव जो है वो डूब जाती है और खजाना जो है वो उसी में डूब जाता है। ऐसी एक कहानी रचने का प्रयास जो था वो मैंने किया था। ये चौथी पाँचवीं की बात होगी तो वो ना कहानी मेरे पास आज जीवित बची है, ना ही उसकी स्मृति कोई उस प्रकार से शेष है। जो कविता पहली बार लिखी होगी या जिसे मैं कविता कहूं कि वो कविता है, तो वो एक कविता है आवारा। हाँ तू भी निकल आधी रात को, पर तू क्यों चांद बन बैठा और मैं आवारा। तो ये कविता का उसका कुछ पंक्तियां थी, ये पहली कविता मैंने लिखी थी, शायद 2012-13 के करीब ये कविता लिखी होगी।
1: जी जी। और पिछले दिनों आपकी जो सोशल मीडिया में एक कविता थी बहुत ही वायरल हुई थी
0: जी,
1: तो उस विषय में वो कौन सी कविता थी?
0: जी वो कविता थी, मैं ताजमहल बोल रहा हूँ, मैं ताजमहल बोल रहा हूँ और ये झूठ है कि मुझे किसी शासक ने बनाया है अपनी बेगम के लिए। मैं ताजमहल बोल रहा हूँ और ये झूठ है कि मुझे किसी बादशाह ने बनाया है अपनी बेगम के लिए। मुझे तो बनाया है अपने हाथ खोकर मजदूरों ने अपने परिवार को चंद निवाले खिलाने के लिए। तो ये कविता थी, एक पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट में कहना तो संस्कृति पे था, लेकिन उन्हें पता था मैं कविता लिखता हूं, तो उनके आग्रह पे ये कविता कही थी।
1: तो आपसे एक सवाल और है कि आजकल जो सोशल मीडिया के दौर में हर कोई लिख रहा है
0: जी,
1: आपके अनुसार असली कविता की पहचान क्या है?
0: इतनी मेरी समझ है, इसको मैं दो भागों में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सोशल मीडिया पर जो कविता लिखी जा रही है, देखिए कविता जब अपने शिशु रूप में होती है, एक विचार जैसा ही होता है, वो विचार आया और मैंने झट से उसको फेसबुक पे लिख दिया और चंद लाइक्स और कमेंट्स से मैंने उसको घोषित कर दिया कि ये एक बहुत बेहतरीन कविता है, कि 10,000 लोगों ने इसे पसंद किया है तो अब ये बहुत अच्छी कविता है। तो वो कविता का पैमाना नहीं होता, किसी अच्छी कविता का या अच्छी कहानी का वो पैमाना नहीं होता, लाइक्स इसको तय नहीं करते हैं। लेकिन फेसबुक की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल लाइक्स और कमेंट ही हैं जो तय करते हैं कि क्या कविता होगी। अच्छी कविता आप उसी सोशल मीडिया में, उसी इंटरनेट के जो पूरा सागर है उसमें डुबकी लगाएंगे तो बहुत सारी अच्छी कविताएं बड़े बड़े रचनाकारों की आपको मिल जाएंगी। अब मैं नाम भी लूँगा तो कालिदास का, गालिब का, मीर का, वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, बहुत सारे लोगों का नाम मैं लूँगा, महर्षि व्यास का, तुलसीदास का, कई नाम ऐसे लिए जा सकते हैं जो बहुत अच्छी कविता है। क्यों है? उसके उत्तर अलग अलग लोग अलग अलग देंगे, अलग अलग लोगों पर उन कविताओं का, उन कहानियों का एक अलग असर है। तो दो तरह से इसको आप देख सकते हैं कि जो पाठक पढ़ने वाला है वो उसको किस प्रकार से ले रहा है, वो उसको किस प्रकार से देख रहा है, उसका अर्थ क्या निकाल रहा है। अगर वो उसके जीवन की किसी घटना को छूता है, उसके जीवन की किसी घटना से वो प्रेरित होता है, उस कविता से वो प्रेरित होता है, हो सकता है कि ग्रामर की दुनिया में या जो भाषाविद हैं उनके ज्ञान के जो पैमाने हैं, मानक हैं, उस मानक में वो कविता अच्छी ना हो, लेकिन है, किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, किसी व्यक्ति का पूरा जीवन का दृष्टिकोण बदल रही है, तो वो बहुत अच्छी कविता हो जाएगी। एक कविता वो है जो हो सकता है किसी व्याकरणविद के, किसी जानकार के मानक में बहुत उत्तम स्तर की कविता हो, लेकिन उस कविता ने आज तक किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन ना किया हो। तो अब यहाँ पर कविता किसे अच्छी कहा जाए, तो मेरा मानना है जो कुछ चेंज ला सकती है, जो कविता कुछ चेंज ला रही है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन में अगर वो कुछ चेंज ला पा रही है, उसके जीवन को कोई मोड़ दे पा रही है, कोई अर्थ निकाल कर दे रही है पाठक वर्ग को, तो वो एक अच्छी कविता है। और दूसरी जो भाषाविद व्याकरणविद कहेंगे उनके अनुसार जो है वो मानकों के हिसाब से अच्छी कविता है, तो दोनों ही अच्छी कविता है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि बड़े बड़े साहित्यकार जिन रचनाओं को कूड़ा रचना कहते हैं, ये टर्म जो है प्रचलित है आजकल, वो कूड़ा रचना भी कई बार बहुत अच्छे रचनाकारों को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। हो सकता है जो रचना आज के परिवेश में बहुत बेहतरीन ना मानी जाती हो, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद जब कोई उस किताब को उठाएगा तो वो कहे अरे वाह इससे बेहतरीन तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता है। तो अच्छी रचना क्या होगी, इसका कोई एक स्पष्ट उत्तर नहीं हो सकता। ये बहुत अब्स्ट्रैक्ट सा उत्तर हो जाएगा कि नहीं ये तरीका आप करेंगे, ये आप फॉलो करेंगे तो ये अच्छी कविता है। वो अच्छा उत्तर हो सकता है, लेकिन अच्छी कविता जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता ही अपने आप में एक अच्छी कविता जो है वो बनेगी।
1: जी जी जी। तो आपकी कविताओं की बात हुई और आप कहानियाँ भी लिखते हैं
0: जी,
1: किस प्रकार की कहानियाँ?
0: कहानी बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि और कामों की भी व्यस्तता रहती है। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं मनमौजी कवि हूँ, कि मेरा जब मन करेगा, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं हो सकता है कि 3-4 दिन साहित्य में किताब उठा के पढ़ूँ लिखूँ, और मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैंने साल भर में भी कुछ नहीं लिखा है। अभी जैसे मैं पिछले 1-2 सालों की बात करूँ तो मैंने उसमें पूरे वर्ष भर में शायद 1-2 पंक्तियाँ लिखी होंगी, लिखा ही कुछ नहीं है, पुरानी रचनाएँ ही चल रही हैं। वो मनमौजी सा कवि हूँ। कहानियों में भी यही स्थिति है कि मन करेगा, कोई विषय लगेगा कि इस पे कहना चाहिए, मेरी कहानी के माध्यम से कोई विषय आना चाहिए, छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की आम जनजीवन में, तो उन समस्याओं का चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से करने का प्रयास जो है मेरा रहता है।
1: कहानियों के कुछ नाम जो लिखी हो अभी?
0: अभी एक कुछ आई थी एक पुस्तक, उसमें 25 के युवा साहित्यकार हैं, उनकी कहानियाँ, मेरी भी कहानियाँ हैं, तो एक मैंगो मैन करके उसमें एक कहानी है, तो वो कहानी है एक आम आदमी की, बहुत छोटी सी समस्या है, उसकी पानी की टंकी जो है वो भर नहीं पाती है, तो वो उस पानी की टंकी को देखता है और उसी के इर्द गिर्द वो पूरी कहानी मैंने बुनी है।
1: तो शिवाजी आपसे प्रश्न है कि क्या कविता समाज में बदलाव लाने की ताकत रखती है?
0: देखिए, समाज में बदलाव कविता और कहानी नहीं व्यक्ति लाता है, व्यक्ति उस कविता और कहानी से प्रभावित होता है या उसमें वो शक्ति जो है वो ये कविता और कहानी लाती है। अब आपकी बात का अगर स्पष्ट उत्तर देना हो तो बिल्कुल हाँ, कविता कहानी जो है वो परिवर्तन लाती है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है, लेकिन मैं कई बार अकेले बैठते हुए सोचता हूँ कि आखिर अंतिम वो कौन सा कवि था जिसने अपनी कविता के बलबूते पर समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया हो, तो कोई बहुत ऐसे बहुत सारे नाम जो है मुझे ध्यान में नहीं आएंगे, लेकिन एक कवि की किसी कहानी और किसी कविता को मंच पर केंद्र में रख कर किसी व्यक्ति ने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया होगा। तो कविताएं कहानियां जो हैं वो माध्यम बनती हैं बहुत बहुत बड़े परिवर्तनों का, लेकिन जैसा कि कविता के लिए कहा जाता है कि कविता पूरी तब होती है जब वो पाठक वर्ग के पास पहुंचती है, जब उसे पढ़ने वाला पढ़ता है तो वो अपना एक अर्थ देकर उसे पूरा करता है। कविता तब पूरी नहीं होती जब वो छप जाती है या कवि जब उसे लिख देता है, कविता तब पूरी होती है जब उसे एक व्यक्ति पढ़ता है और उसे एक अर्थ देता है, वो अर्थ उसे पूरा बनाता है और वो जो अर्थ है वो परिवर्तन लाता है। तो कविता कहानियां हाँ परिवर्तन लाती हैं, कवि कितना परिवर्तन लाते हैं ये थोड़ा सा इस पर लंबी चर्चा हो सकती है।
1: तो ये तो हुई कविताओं की बात, अब बात करते हैं आपके रिसर्च के सफ़र की, जो इतिहास में पीएचडी करने का विचार जो था आपको कैसे आया? आप तो कवि ही हैं।
0: ऐसा कोई कि मैंने बहुत पहले से चिंतन किया हो कि मुझे ये करना, ऐसा नहीं है, कविता ही कहानियां ही इसका माध्यम बनी कि मैं इस क्षेत्र में गया। वो क्यों बनी, लोक साहित्य पे मेरी एक रुचि थी, उसके रुचि है, इसके साथ ही जो हमारी रीजनल हिस्ट्री है, नेशनल हिस्ट्री भी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी, इनमें आनंद आता है, कहानियाँ ही तो हैं, इन कहानियों को सुनने का, जानने का, पढ़ने का में आनंद आता है। अब ये आपको पेट पालने का भी साधन हो सकती हैं, और आपको इन दी एंड तीन वक्त का खाना जो है वो पूरा करना है, कभी कविता पढ़कर पेट नहीं भर सकता। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद नहीं है किसी वेस्टर्न राइटर ने ये कहा था कि कविताओं को या कहानियों के लिए कहा था, या शायद कविताओं के लिए कहा था कि ग्रामेटिकली उनको बांध देना जो है वो उनकी स्वतंत्रता छीनना है। तो मैं भी उस बात पर इत्तेफाक रखने वाला व्यक्ति हूँ, हालांकि मैं ज़रूर कहता हूँ कि व्यक्ति को छंदबद्ध कविताएं लिखना और जो फॉर्मूले हैं, मीटर है, बहर है, उसमें लिखना आना चाहिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि व्यक्ति स्वतंत्र जो है वो जो छंद मुक्त कविताएं उनमें ज़्यादा स्वतंत्र रहता है, कि उनमें वो होता है जो वो सच में कहना चाहता है, उसमें लाग लपेट नहीं होता है। तो इसीलिए कविताओं ने मुझे ये तो समझा दिया कि मुझे हिंदी में नहीं जाना है, तो कविता के साथ जुड़ता, साहित्य के साथ जुड़ता कौन सा एक सब्जेक्ट हो सकता है, तो इतिहास बड़ा करीबी सब्जेक्ट है। तो उस नाते से मैं इतिहास में पीएचडी करने के लिए चला गया, आप ऐसा कह सकते हैं। इतिहास से प्रेम था, इतिहास की उन कहानियों से प्रेम था, उसमें बहुत कुछ सोचने को, विचारने को एक मौका मिलता है इतिहास में, चीज़ों को अलग तरह से। जैसे मैं कहता हूँ कवि भावनाओं में रहता है, इतिहासकार उतना भावनाओं में नहीं रहता है। तो मेरी कविता और मेरा विरोध, विद्रोह, क्रांति जो है वो भावनात्मक ना हो, वो प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो। तो इतिहास मुझे उस दिशा में, उस दृष्टि में बढ़ने की एक जो रास्ता है वो बताता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो धर्म कहा जाता है कि धर्म जो है विवेक आपका एक तरह से, वो आपको बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वैसे ही कविता में इतिहास जो है वो मेरा धर्म बन जाता है। तो मुझे वो भावनाओं में बहने नहीं देता है बहुत ज़्यादा, वो मुझे धरातल पर रखता है, प्रैक्टिकल जो अप्रोच होनी चाहिए उसकी ओर बढ़ाता है।
1: तो हमारा एक सवाल और है कि अगर आपको किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे?
0: बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि आपने एक ही ऑप्शन दिया, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शन चाहिए थे, और क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है तो मुझे लगता है ऑप्शन लिए जा सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ओशो हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से मैं मिलना चाहूँगा, इससे पूर्व में बहुत सारे लोग हैं, कबीर से मुझे मिलना, रहमान से मैं मिलना चाहूँगा, उससे पीछे चले जाएं वेद व्यास से, और इस तरह से बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ जिनसे अगर मिलने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि मृत्यु उपरांत अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मरने के बाद लोगों की आत्माएँ या उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो पहुँचती है, और वहाँ पर ये लोग होंगे, तो मैं बहुत सारी बातें इन लोगों के साथ करना चाहूँगा। तो बहुत सारे नाम ऐसे मैं बता सकता हूँ इनके अतिरिक्त भी।
1: कभी आपको ऐसा आभास हुआ है कि, आभास तो नहीं कह सकते, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को अचानक कोई कविता दिमाग में आई हो?
0: ऐसा मुझे लगता है
1: और सुबह आप उसको भूल गए हो या याद रखी हो या कागज पे लिख ली हो?
0: जी, ऐसा मुझे लगता है जो भी कविता लिखता है उसके साथ ऐसा जरूर होता है। कई बार सोते सोते मतलब ऐसा विचार या ऐसी रचना दिमाग में आएगी, रचना तो खैर वो नहीं होती, अपनी शैशव अवस्था में होती है, बहुत प्यारा सा वो थॉट होगा, लेकिन समस्या वही है, आप बड़ी दुविधा में होते हैं, आप उठ नहीं पा रहे होते हैं, और आपको लगेगा कि सुबह तक मैं इसको याद रखूंगा। अब सुबह आपको बस ये याद होता है कि बड़ी अच्छी पंक्ति जो है वो आपके ध्यान में आई थी, लेकिन सुबह तक वो एक आध शब्द ही बच गया होगा, तो वो स्वप्न के साथ ही उस कविता का जो है वो अंत हो जाता है। कई बार मैंने ऐसा ज़रूर किया, एक दो बार ऐसा हुआ है कि कोई कविता जो है वो रात को ध्यान आई और मैंने उसी समय अपने आप को मोटिवेट किया है कि मुझे ये लिख लेनी है कहीं पे कागज़ पे, तो मैंने उठ के उसको लिखा भी है। सुबह उठ के मुझे लगा हो कि इतनी भी कुछ खास नहीं थी, अगर छोड़ देता तो कोई बड़ा विषय नहीं था। तो मुझे लगता है वो जो थॉट आता है ना, वो प्रसन्नता उस थॉट की है, जो कि सोते सोते भी मैं सोच पा रहा हूँ, वो उस थॉट की प्रसन्नता है। शायद कविता का उतना उसमें रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये स्वप्न में होता है कि इस प्रकार से रचनाएँ आती हैं।
1: तो शिवाजी, लिखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, लोगों से, किताबों से या अकेलेपन से?
0: ये सारी चीज़ें ही प्रेरित करती हैं। व्यक्ति समाज से दूर नहीं होता है, तो समाज ही उसे सिखाता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। अब आपके साथ चर्चा हो रही है, कोई अच्छी बात निकल कर आ जाएगी तो वो भी एक थॉट है, तो वो प्रेरित करेगा ही कि कुछ कहानी बनाई जाए या उसको एक कविता का रूप दिया जाए। तो आसपास की चीज़ें ही जो हैं वो हमें प्रेरित करती हैं। ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, छोटी छोटी घटनाएँ होती, मेरा मानना है जब आप देखना शुरू कर देते हैं, जब आप गहराई से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, उन पे प्रश्न करना शुरू करते हैं, चीज़ों को आप जैसे आपको मिल रही हैं आप वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो अपने आप विचारवान हो जाते हैं, विचार की जो धारा है वो आपके शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। और जब आप विचार करना शुरू कर देंगे और साथ में पढ़ेंगे भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप विचार करने के साथ पढ़ें, क्योंकि विचारों पर लगाम लगना बहुत आवश्यक है। बिना लगाम के जो विचार हैं वो पूरे समाज के लिए घातक हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि इंजीनियर्स जब काम करते हैं, उस इंजीनियर का अगर बनाया हुआ प्रोटोटाइप फेल हो जाए तो उसको क्वेश्चन, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन विचार करने वाले लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर उनके विचार पॉपुलर उनके मरने के बाद हो रहे होते हैं। तो अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो किसको पूछेंगे। तो विचार को लगाम रखने के लिए अध्ययन आवश्यक है। तो अध्ययन के साथ ऑब्जर्व करना, बातचीत करना, भ्रमण करना, भ्रमण करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कई बार कहता हूँ जितना आप भ्रमण करेंगे, तो भ्रमण करने से आपको नए विचार, नई चीजें, और उनको एक्सेप्ट करना, जो आप नहीं मानते हैं, जो सत्य जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, पूरी जिंदगी आपने किसी सत्य को ऐसा सोचा हो कि यही अखंड सत्य है, उस अखंड सत्य को भी प्रश्न करना, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये चीजें आती हैं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति खुद ब खुद लिखना जो है वो सीखता है या आता है।
1: एक सवाल हमारा और है कि अगर आपको कविता और इतिहास में से सिर्फ एक चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे?
0: आप बहुत कठिन प्रश्न जो है वो दाग रहे हैं। दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कविता चुनूंगा
1: जी।
0: उसका कारण ये है कि कविता अपने आप में इतिहास जो है वो बनती है वर्तमान का, क्योंकि वर्तमान के बारे में कविता कहती है, वर्तमान के बारे में वो बताती है, वर्तमान का दर्पण है, और जो इतिहास है वो पुरानी बातों की बात करता है। तो जब आप पिछली बातों पे, हो सकता है कि उसको देखने के लिए, तो उसके बारे में पहले ही बहुत सारे लोग कह चुके होते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा होता है, पुराने समाज को समझाने वाले उस समाज के लोग भी और इस वर्तमान समाज के लोग भी बहुत सारे हैं, मुझसे बेहतरीन है, लेकिन जो कविता है वो वर्तमान को समझाएगी और वर्तमान में मैं कैसे समाज को देख रहा हूँ, जीवन को मैं कैसे देख रहा हूँ, संस्कृति को कैसे देख रहा हूँ, तो बिल्कुल वो एक नया अनुभव है, अलग अनुभव है। इसीलिए अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कविता चुनूंगा, और कविता अल्टीमेटली मुझे इतिहासकार भी बनाई देगी
1: जी। बहुत ही अच्छी बात है शिवाजी। तो अब हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई छोटी सी कविता या कुछ पंक्तियां हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: जी एक कविता है, ये कविता जो है वो बात कर रही है घर से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में
1: जी।
0: कविता का शीर्षक नहीं बोल रहा हूँ, सीधे कविता पे आ रहा हूँ, कि अपने घर पर पहाड़ की गोद में, अपने घर पर पहाड़ की गोद में उतावलापन दिखाने वाली अल्हड़ नदियाँ, अपने घर पर पहाड़ की गोद में उतावलापन दिखाने वाली अल्हड़ नदियाँ किराए के मकान में गंभीर चित्त वाली हो जाती हैं। अपने घर पर पहाड़ की गोद में उतावलापन दिखाने वाली अल्हड़ नदियां किराए के मकान में गंभीर चित्त वाली हो जाती हैं। उनकी रफ्तार कुछ कम होती है, उनकी रफ्तार कुछ कम हो जाती है, वे शांत हो जाती हैं। मर्जी से बहने निकली नदियां अनुशासन दिखाने लगती हैं। पत्थरों को तोड़कर भागने वाली अब रेत को सहलाती हैं, उसमें जीवन बो देती हैं। उस जैसी कई नदियां अपने घर से दूर बहती हैं, अलग अलग परिवेश से आई ऐसी कई नदियां शहर में पहुंचकर एक जैसी हो जाती हैं। कुछ भीड़ में खो जाती हैं, कुछ समाज द्वारा पी ली जाती हैं, कुछ बची हुई नदियां सागर में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं। नदी बस अपने घर पहाड़ पर नदी होती है, वहां से निकल जाने के बाद वे सब कुछ होती है, नदी नहीं होती, वे सब कुछ होती है, नदी नहीं होती।
1: बहुत ही शानदार बातचीत रही आपके साथ। आखिर में युवा दर्पण सुन रहे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: ये अपने बराबरी और अपने साथ के लोगों को संदेश देना बड़ा जटिल काम होता है, क्योंकि पता चले 10 साल बाद वो संदेश मैं ही फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको कहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ कहना हो या आग्रह करना हो तो मैं ये कहूँगा कि अध्ययन कीजिए, किसी भी चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट मत कीजिए जैसे वो आपको बताई गई है या दी जाती है, लेकिन उसके परिवर्तन करने के लिए तभी आप पूरा दम लगाइए जब उस परिवर्तन को करने के बाद आपके पास उसकी जगह पर कोई एक अच्छी चीज़ रखने के लिए हो। यानी कि आप उस परिवर्तन का हिस्सा बनिए जो उस चीज़ को हटाकर उसकी जगह कोई अच्छी चीज़ रख रहा हो, ऐसा आपको कार्य जो है वो करना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है अध्ययन कीजिए, भ्रमण कीजिए, सोशल मीडिया की हर बात को वैसे ही लेना आवश्यक नहीं है जैसा आप लेते हैं, उस पर प्रश्न कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, और जब आप ये सब करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित है युवाओं के हाथ में। तो इसी आशा के साथ मुझे लगता है कि
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शब्दों की ताकत और इतिहास की समझ कैसे एक युवा को समाज से जोड़ती है। हमारे आज के मेहमान शिवा पंचकरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, देने के लिए, मंच देने के लिए।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। फिर मिलेंगे नई प्रेरणा और नई कहानी के साथ। नमस्कार।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 6:35 पर मौजा ग्राइंड यहाँ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही विशेष कार्यक्रम गरीब कल्याण प्रसारित किया जाएगा। सात बजकर 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, रात्रि 8:00 8:30 पर सुनिएगा देश कान। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार, रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही संगीतकार कार्यक्रम और 9:30 पर हिमाचली लोकगीतों और गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। इसमें श्रोता हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। और रात्रि 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
3: आरबीआई कहता है
4: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों के दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी एचपी रेडी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना इस वर्ष जनवरी से नवंबर 2030 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले 3 वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने पर भी बल दिया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन दल को कुल्लू की माउंट देव टिब्बा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर से चुने गए 24 एनसीसी कैडेट्स का ये दल 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए पीर पंजाल रेंज जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना मजबूत करते हैं। कविंद्र गुप्ता ने सभी कैडेट्स को सुरक्षित और सफल आरोहण की शुभकामनाएं भी दी।
6: पूरा विश्वास है कि ये कैडेट जब इस सारे ट्रेनिंग से गुजरेंगे तो आने वाले समय में ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक असेट बनेंगे। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो मेहनत, इनकी जो लगन, जो इनकी तपस्या रहेगी, जो देशभक्ति की भावना, वो अपने आप में एक जो विकसित भारत 2047 का हमारा सपना है, उसको भी आगे बढ़ाएगी।
5: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 4 में से 3 नगर निगमों में

0: ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं।
1: चुनाव खास करके लोकल फैक्टर्स के ऊपर लड़े जाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं जो जनादेश मिला है वो वहां के लोगों को मिला है, स्थानीय निकाय के लोगों को मिला है, स्थानीय प्रधानों को मिला है, उप प्रधानों को मिला है, बीडीसी मेंबर्स को मिला है, जिला परिषद मेंबर्स को मिला है। उस पर हम मिलकर आने वाले समय में कार्य करेंगे और हर जगहों पर जहां पे समितियां बननी है, जहां पे जिला परिषद बनना है, उस पर पूरा प्रयास भी किया जाएगा कमेटीज बनाने का और मिलकर हम फिर आगे कार्य आने वाले समय में करेंगे।
0: प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस सरकार की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब बौखलाहट में जनता को गुमराह करने के लिए निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। राकेश जम्वाल ने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ लगातार बढ़ रहा है और 3 नगर निगमों में जनता ने कांग्रेस का राजनीतिक बहिष्कार क्या है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव हिमाचल की सत्ता का सेमीफाइनल था जिसे भाजपा ने निर्णायक रूप से जीत लिया है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता भाजपा को अपना पूर्ण समर्थन देगी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस ने व्यापक जन समर्थन प्राप्त कर अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति को पुनः प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 54 शहरी निकायों में से 32 में कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों की जीत हुई है, जिससे स्पष्ट है कि जनता कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और विकासात्मक दृष्टिकोण पर पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रही है। विनय कुमार ने कहा कि नगर निगम चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस संगठन द्वारा विश्लेषण किया जाएगा ताकि भविष्य में संगठनात्मक स्तर पर और अधिक मजबूती लाई जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू रूप आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान बाणी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों अज टियाले पर नमजसो की पंच ता पंच जी राम राम।
1: राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम सुना कर दे सारे ही स्रोतें जो भी पंच की तरफा दे राम राम। दिखा जहाँ टियाले पर जड़े से थोड़े जल्दी आएगी हो क्योंकि थोड़ा इदा समय जड़ा से परिवर्तित हो गया है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दे अनुसार हाँ जो भी जड़ा से समय दे अनुसार चलना पौंदा और कन्ने कन्ने हाँ जरा जल्दी टियाले पर जड़े से आई गए है ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: और दसा बड़का चाचू जी अज जड़े से बड़े दिन बाद टियाले पर मुलाकात हुई है तो हाँ अजकल क्या काम कार जड़े से खेती बाड़ी दे चलाए होना इन्होंने दिनों च।
0: ओ पंच जी दिखा कि मैं ठहरिया पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला।
1: हाँ
0: तो एक किसे पिछे दी बरखा हुई थी।
1: अच्छा
0: तो तुहानू पता कि किसान तो सोचता कि भी मेरा काम तौले तौले मुकी आए
1: जी।
0: और जी जेड़ी बरखा हुई थी तो थोड़ा थोड़ा सलाबा भी था।
1: हाँ हाँ।
0: तो मैं बाई थी मक्कियां।
1: अच्छा
0: फिर मक्कियां बाई दी भाई तो हूँ तुहां जो पता कि जियां पहाड़ी क्षेत्र जेड़ी बरसात के भी तौले तौले आई जाती है।
1: हाँ जी,
0: ना
1: हाँ जी।
0: तो फिर मक्कियां बाहने के बाद मेले थोड़े टब्बर भी किट्ठा होया था घरे।
1: अच्छा
0: तो मेले इन्हों का भी थोड़ा ला ले लेंदा है। तो फिर इसे जल निकासी का भी जेड़े चले चूले पाए ना।
1: अच्छा
0: तो क्योंकि जल निकासी भी करना पौंदी

0: कि किस तरह से जेड़ा पानी के भी रुकना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें ठीक लाया कि हाँ जो जेड़े से इन्हें दिन च हाँ मक्की दा जेड़ी से बिजाई करा करते, और खासकर जेड़े निचले क्षेत्र जितु सिंचाई दी प्रबंध है उत्थू जेड़ा से हाँ दे किसान भाई धान दी तैयारी भी जेड़ी से चली, और इन्हें दिन च पनीरी जेड़ी से तेना लगाई दी है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: कुल मिलाए के यही है कि अहाँ का क्षेत्र जेड़ा से हूँ अगली फसल की तैयारी जी से जोरों शोरों से चली, और अहाँ जो अगली फसल तो लगाने से पहले जेड़ा से बीज का चुनाव जेड़ा से बड़ा जरूरी हो जाता है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि दिखा ना बोल देन कि बीज जड़ा के भी पूरी साड़ी मतलब जेड़ भी हम मेहनत कर दे ना,
1: हाँ जी
0: अगर हम बीज का सही चुनाव करेंगे तो साड़ी जेड़ी मेहनत के भी फले पौनी है।
1: बिल्कुल बड़का चाचू, कन्ने इस दे कन्ने कन्ने और दस्सा तो हाँ आज क्या नई जानकारी जेड़े से अपने स्रोते तक पहुंचा कर दें तो हाँ।
0: दिखा पंच साहब की असदा जेड़ा किसान साथी है भी अपनी खेती बाड़ी दे कन्ने कन्ने कई जेड़े कारोबार के भी रखे ना,
1: जी,
0: ताकि उन्हें जो एक अतिरिक्त जेड़ी आमदनी के भी मिली सके।
1: हाँ जी
0: ता अज हाँ जेड़ी गलबात करनी है खुम्ब उत्पादन दे बारे च।
1: जी
0: ता दिखा किसान साथी की भी किसाने दी आय बढ़ाने और रोजगार दे अवसर उत्पन्न करने ताई कृषि दे कन्ने कन्ने सहायक व्यवसाय जो भी के अभी प्रोत्साहित कितिया जादा।
1: जी
0: कने खुम्ब उत्पादन ऐसा एक लाभकारी व्यवसाय है जेड़ा कि घट भूमि पर कने घट पूंजी और घट समय च ज्यादा जेड़ा आय के भी प्रदान करता है। कने खुम्ब पौष्टिक स्वादिष्ट कने औषधीय गुणा दे भरपूर के भी खाद्य पदार्थ है। इस दी बढ़ती मांग दे कारण आज खुम्ब दी खेती के भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र च लोकप्रिय के भी हुआ कर दी है। कने खुम्ब उत्पादन दी सफलता ताई उचित प्रशिक्षण के भी अत्यंत जरूरी है, कजो कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिस च तापमान आर्द्रता स्वच्छता और तकनीकी ज्ञान का जड़ा विशेष महत्व के भी हुंदा है।
1: जी इसदे कन्नै दिक्खा तो हाँ साढ़ी जेहड़ी खुम्ब जेहड़ा सफेद सोना जी भी जेहड़ा से बोले जांदा, और इस बिच प्रोटीन विटामिन खनिज लवण फाइबर कन्नै आवश्यक अमीनो अम्ल जेहड़े से प्रचुर मात्रा च पाए जांदे नहीं, यानी कि कुल मिलाए कि हाँ जो इसका उपयोग भी करना चाहिए, और उपयोग जेहड़ा से बड़ा जेहड़ा इस बिच कई तरह के तत्व मौजूद न, और
0: बिल्कुल
1: इससे
0: बिल्कुल
1: साड़ी स्वास्थ्य भी जेहड़ा से ठीक रहने दिए है ना।
0: बिल्कुल। कहने एक कम बसा और कम कैलोरी वाला जोड़ा खाद्य पदार्थ के अभी है, कहने इस ताई स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों च इसकी मांग के भी निरंतर बड़ा कर दिया है।
1: अच्छा
0: कहने खुम्ब का उपयोग सब्जी सूप अचार कने स्नैक्स कने विभिन्न खाद्य पदार्थ उत्पाद के निर्माण के भी किया जाता है।
1: जी,
0: इस दे औषधीय गुण भी अनेक रोगों की रोकथाम च कहने भी सहायक मन्ने जाते हैं।
1: जी, इसके कन्ने कन्ने खुम्ब की खेती दे सामान्य फसलों अहाँ खेती ते जेड़ा से अलग होंगी है, इस जहाँ जो विशेष प्रकार का वातावरण वैज्ञानिक तकनीक दी जेड़ी से जरूरत होंगी है। अगर किसान या फिर साढ़े उद्यमी बिना प्रशिक्षण दे खुम्ब उत्पादन शुरू कर दें तो उत्पादन च कमी या फिर रोगों का प्रकोप जेड़ा से बढ़ जाता है ना, और
0: बिल्कुल
1: इससे जेड़ा से उन्होंने आर्थिकी नुकसान जेड़ा से होंगे है।
0: बिल्कुल कने प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों जो के भी मती सारी जानकारी के भी मिलती है,
1: जी
0: जिया कि खुम्ब दी मती सारी प्रजातियां, खाद या फिर कंपोस्ट तैयार करने दी विधि,
1: हाँ जी
0: बीज का चुनाव और उपयोग किया करना है, कने तापमान और आर्द्रता का नियंत्रण और रोग और कीट प्रबंधन, कने कटाई भंडारण और विपणन दी तकनीक है। कहने इस च गल की जाए पंच साहब जी की खुम्ब उत्पादन प्रशिक्षण का जोड़ा मुख्य उद्देश्य है किसान युवा और महिला जो स्वरोजगार ताई सक्षम के भी बनाना है। कहने इस
1: जरूर,
0: च आधुनिक तकनीक दी जानकारियां दी जानिया हन,
1: अच्छा
0: उत्पादन लागत जो के भी घट करना है, गुणवत्ता युक्त खुम्ब का उत्पादन बढ़ाना है, कहने ग्रामीण क्षेत्र च रोजगार के अवसर के भी मिलने हैं,
1: जी
0: किसानों की आय च वृद्धि करना है। कहने प्रशिक्षण च सिखाई जाने वाली तकनीकों की गल की जाए तो इस दियाँ कि भाई खुंभ दी क्या क्या जड़ी प्रजातियां ने और किया इन्हों का चुनाव के भी करना है,
1: जी
0: कहने कंपोस्ट किया तैयार करना है, बीज किया अहाँ बोना
1: बाना
0: है,
1: है। हाँ जी
0: कहने तापमान और इसका जड़ा आर्द्रता दे अहाँ जो विशेष ध्यान के भी रखना पौना है, कहने रोग और कीटा का नियंत्रण अहाँ किया करना है, कटाई और भंडारण ये सारी चीज़ा सन जो दसी जानी प्रशिक्षण के दौरान।
1: जी
0: कहने इस दे प्रशिक्षण दे लाभ दी गल कीती जाए तां उत्पादन च क्या भी वृद्धि होनी है,
1: हाँ जी
0: गुणवत्ता इस जड़ी बड़ी बांकी होनी है, कहने रोग और नुकसान दी संभावना के भी घट रहनी
1: घटी
0: है,
1: आनी है।
0: कहने ग्रामीण महिला और युवा जो जड़े रोजगार के भी मिलना है। कहने इस च गल कीती जाए कि भाई दिखा भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें कहने भी खुम्ब उत्पादन जो बढ़ावा देने ताई
1: जी
0: प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान कर दिया हन। कहने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और उद्यानिकी विभाग समय समय पर खुम्ब खुंभ उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण के भी आयोजित कराते हैं। इन्हां कार्यक्रम के माध्यम से किसानों जो आधुनिक तकनीकों का जानकारी मिलनी और व्यवहारिक प्रशिक्षण के भी दित्या जाना है।
1: जी तो ये तो थी सारी जानकारी खुंभ उत्पादन और हाँ रोजगार किया लेना इसते है ना।
0: बिल्कुल
1: इसके बारे च और इसके बाद हाँ चलना लोक भजन की तरफ और सुनना एक प्यारा दिया लोक भजन
0: जी।

0: किसान साथियों, आशा करने कि इस लोक भजन दे बाद ये लोक भजन तुहां जो पसंद आया होना और उन्हां चलना अगली जानकारी की तरफ ता सुन देने जानकारी।
1: जी
0: किसान साथियों, जियां कि तुसां जानदे न कि टियाले दे माध्यम कने असां तुहांजे तिकर ढेर सारी जानकारियां कने भी पहुंचांदे रहिंदे न, चाहे से जानकारी डॉक्टर दी होए, विज्ञानिक दी होए या फिर असां दे उन्नत किसान भाई दी होए। तां अज इसे कड़ी विच गलबात करनी है विज्ञानिक विधि द्वारा मशरूम उत्पादन। इस संबंध च इस वेले साडे टियाले पर मौजूद हन डॉक्टर अरुण कुमार सूद, प्रधान प्रसार विशेषज्ञ एवं कार्यक्रम निदेशक मशरूम, चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर दे। तां सारे दे पहले डॉक्टर साहब तुसां दा टियाले पर बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिया की असा दा किसान साथी अपनी खेती बाड़ी दे कामकाज दे अलावा कई तरह दे व्यवसाय जो करता है जिस च खुंब उत्पादन भी शामिल है, अगर असा दा किसान साथी खुंब उत्पादन दा काम करना चाहता है तो शुरू च किना किना जेड़ी गल्ला बात कन से ध्यान च रखना चाहिए जी।
2: नमस्कार, सब ते पहले तो यह है कि अगर कोई खुंब दी खेती करना चाहता तो इसे ट्रेनिंग लेना बड़ा जरूरी है, प्रशिक्षण लेना बड़ा जरूरी है
0: जी।
2: कने ए प्रशिक्षण जेड़े न अहां दे हिमाचल विच कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्व विद्यालय ने खोलियो, हर एक जिले च एक कृषि विज्ञान केंद्र है, ता इथू जांदी या हमारा प्रसार शिक्षा निदेशालय है पालमपुर है ते इथू ट्रेनिंग हो जांदी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है से मशरूम दा यूनिट है पालमपुर, उथू ती दी ट्रेनिंग करवाई जांदा। कने एक है प्रसार शिक्षा डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन चंबागाट स्थित है, इथू भी इहदी खुंबां दी प्रशिक्षण जे ट्रेनिंग करना चाहे से ले सकदा
0: जी। डॉक्टर साहब, अगर जिया असा दा जेड़ा किसान साथी है या फिर बेरोजगार युवा साथी है खुंब दी खेती करना चाहता है, विभाग की तरफ अदे भी कोई मदद वगैरह दी जाती है?
2: जलो तुहानी ट्रेनिंग हो जानी तुहें सर्टिफिकेट मिलना, फ्री जेड़ा बागवानी विभाग है इस वास्ते तुहें वो कमरे बनाने वास्ते भी पैसा उपलब्ध करांदा, कहे जे तुहें खाद मशरूम दी लेनी इस वास्ते भी तुहें तने कुछ ना कुछ जेड़ा सा
0: प्रोविजन
2: अनुदान जेड़ा सा मिलता।
0: शुरू च मतलब सिखलाई लेना बड़ी जरूरी है
2: जी,
0: क्योंकि कोई भी यहाँ अगर नया काम कर दे तो सिखलाई लेके करेंगे तो फिर इसे काम समझो थोड़ा आसानी ने हो जाना। जल असा दा जेड़ा युवा बेरोजगार साथी या फिर किसान भाई मतलब सिखलाई लेना चाहता है तो शुरू च क्या इहदे बारे च कोई प्रार्थना पत्र देना पौंदा या फिर क्या प्रक्रिया रहिंदी है?
2: प्रार्थना पत्र जेड़े ना सै जेड़ा बागवानी विभाग है इसे दे दिया, कृषि विज्ञान केंद्र ने इथू दे दिया, फिर ये ग्रुप बनाई के जेड़े ना सै हाला भिजवाइंदे या बागवानी विभाग जो भिजवाइंदे पालमपुर सै फिर ट्रेनिंग जेड़ियां दे करवांदे रहिंदे।
0: ये ट्रेनिंग कितने कितने दिन दी होनी है और क्या इहदी जेड़ी प्रक्रिया रहनी है?
2: 5 ते 6 दिन तक ट्रेनिंग होंदी, इस च तुहें सारा मशरूम दे बारे च जानकारी दिंदे। तां जियां हुण मशरूम ही न ये भी बड़ियां किस्मां दे हुंदे, जियां तुहें दसदा सफेद खुंब होंदे, फिर एक डिंगरी होंदी, एक मिल्की मशरूम होंदी, एक दाना पर लगदे मशरूम होंदे, एक नौवें शिटाके हैं, फिर एक होर है ऋषि मशरूम है, बाकी तुहां गुच्छिया ना तो सुने होना
0: जी जी जी।
2: तां इस टाइप दे बड़े भारी मशरूम हैं, पर हां जेड़े मेन करी सकदे सै ना वाइट बटन मशरूम जेड़ी सफेद खुंब है खुंबी है कने डिंगरी
0: जी जी,
2: इहदी खेती जेड़ी है सां उहदी प्रोपर ट्रेनिंग दिंदे। कने जेड़ा वाइट बटन मशरूम है ये भी 2 तरीके ने बनदी
0: जी,
2: इहदी खाद जेड़ी है 2 तरीके ने बनदी, एक लघु विधि हुंदी कने एक लंबी विधि हुंदी, एक डिंगरी हुंदी। जेड़ी डिंगरी है ता खैर बड़ी आसान है लगाना
0: जी जी। अच्छा, इस दे अलावा जियां अहां खाद दी भी गल कीती है ता एक खाद कुथू जाई के मिलदी है या फिर किसान भाई के भी अप्पू भी बनाई सकदा ऐसा खाद जो?
2: जद तुहां जेड़ी हां ट्रेनिंग देनी ना तिस च तुहां यो 2 किस्मां दीयां खादां बनाना दसणियां, लंबी विधि ने भी नहीं छोटी विधि ने। जेड़ी छोटी विधि है तिस च क्या हुंदा कि सारी मशीनरी लगदी
0: जी जी,
2: ता कने लंबी विधि जेड़ी है तो हां अप्पू अपने हाथा ने अपने घरें भी बनाई सकदे। कने जेड़ी छोटी विधि है इस वास्ते जेड़ा तुहें पहले तो मटीरियल चाहिए भी क्या क्या मटीरियल लगना, तो इस वास्ते जियां हां मन्नी लिया कोई 10 क्विंटल खाद बनानी है इसकी, तो 10 क्विंटल जेड़ी अहें तूड़ी चाहिदी
0: जी जी।
2: फिर यहाँ जेड़ी बड़ूइया दी खड़े हैं सह 20 किलो चाहिए, फिर मुर्गिया दी बिठ होंगी जानते ना तुम
0: जी जी,
2: 400 किलो सह चाहिए, फिर कणका दा बरादा हुंदा है क्या कहलांदे तुहां क्या कहलांदे जी जो चोकर
0: जी,
2: ते चोकर 50 किलो चाहिए दिसियो। कने यूरिया भी कोई 10 ते 15 किलो लगना, कने एक जिप्सम हुंदा सह तिस च पौंदा कोई 100 किलो। तो ये चीजा हर हो गई तां जेड़ी है छोटी विधि ने मशरूम दी खाद बनाई सकदे। कने अगर तुहां घरे अपने लंबी विधि ने बनानी होए तो इस वास्ते मन्नी लिया कि तुहां 3 क्विंटल खाद बनानी है, इस वास्ते जेड़ी है चोकर जेड़ी तुहाड़ी 15 किलो लगनी, यूरिया 3 किलो लगना, कैन है 9 किलो लगनी, मिर्ट पोटास हुंदी 3 किलो लगनी
0: जी,
2: सिंगल सुपर फास्फेट है 3 किलो लगनी, मोलासिस मोलासिस मतलब हुंदा है गुड़े दे नहीं हुंदे हराब दे
0: जी,
2: पता होना तुहें सै 6 किलो लगनी, कने जिप्सम जेड़ी है 30 किलो लगनी, कने और कोई बीमारियां बुमारियां कोई कीटनाशक जेड़ा सै बीच पई जांदा।
0: अच्छा तो ये जितनी भी चीजा दसी ने इन्हों का मिश्रण बनाई के इदी खाद के भी तैयार की जाती
2: है। हाँ फिर इस दे जड़ी है जड़ा मिश्रण बनाते इस वास्ते क्या करते जी जिया तो हम मनी लिया कि छोटी विधि है नहीं दसदा मैं तो समझाता थोड़ा दिया कि किया बनाते पहले क्या करते कि जी तूड़ी लैनी हाँ जिया मनी लिया 10 क्विंटल तूड़ी ली है तो इसे हाँ पहले 4-5 दिन जी इसे पानी ने भिगोना
0: जी
2: कई भिगोना कि जी तूड़ी होंगी बड़ी सख्त होंगी फिर ताकि ये नरम हो जाए फिर इस क्या करेंगे जल 4 दिन हो जाने तो इस जी है 400 किलो जी दसी है मुर्गिये की पिठ है सह पाई देनी कने जी है बड़ूइया की खाली दसी सह पाई देनी कने चोकर भी पाई देनी फिर इन्हें 4-5 दिन जी इस उस मिक्स करते रहना कने पानी देंदे रहना अच्छी तरह मिक्स हो फिर क्या करना जे उसके बाद हाँ जी छोट विधि है दो तरीके ने बनती एक फेस वन होंगे कने एक फेस टू होंगे फेस वन होंगे मतलब बाहर बना दी कने फेस टू होंगे भी अहां अयो अंदर ले आनी है
0: अच्छा
2: टनल च पाई दे हुंदे ते फेस वन च हां क्या क्या करदे भाई तिस जो 10-12 दिन लगदे ते पहले क्या करदे जियां भाई ता सारा मिक्सचर हो गया जलू चौथा दिन आना तालू इस च हां क्या कहंदे जिप्सम पाई देना ठीक है कने जलू छठा दिन आना तालू के जड़ी है स्टैक बनाते हुंदे हां जी डेरियां लगांदे ते नहीं है तोड़ी दानी कने दोबारा बनाई देनी जलू 8वां दिन आना तालू जड़ी इसे खाद जड़ी है बुरी हो जानी काली हो जानी कने इसे जो हां टनल वास्ते जड़ी अंदर ले जाने वास्ते तैयारी हो जानी उसे सेकंड फेज गलांदे जिसे अंग्रेजी च गलांदे पाश्चराइजेशन कने कंडीशनिंग पाश्चराइजेशन मतलब जड़ी इसे इस अंदर जड़ी हां इस जड़ी है यूरिया रिये पाए इस अमोनिकल अमोनियम नाइट्रेट बनी जानी ना खत्म करी के जी है प्रोटीन च बदल हो जाती जी प्रोटीन है यूजफुल हो जाती फिर जो होता 8 दिन जड़े हो जानी सह जलू हाँ ट्रांसफर करी थी अंदर इसके बाद क्या होंगे फिर 2-3 दिन फ्रैश एयर देंदे रहना इसे
0: अच्छा।
2: टेम्परेचर जी है कोई 45 से 52 रखनी पौंदी फिर 4-5 दिन हो जाने तो टेंपर फिर बंद कर देनी फिर हाँ स्टीम देनी तल टेंपरेचर कोई 59-60 डिग्री हो जाए ताकि अच्छी तरह हो जाए
0: मतलब कमरे च
2: कमरे ची अंदर टनल जी होनी ना सुरंग जी किस्म बनाई होंगी तो इस अंदर रख दे फिर 5-6 दिन क्या करना जी है अमोनिया फ्री हो जाती जी सह मुस्क आती ना जी हाँ सत्तीस से हटी जानी फिर 7वें दिन क्या करना हाँ टेंपरेचर डाउन कर देनी कने 25 डिग्री लियानी बड़े बलोर बलार लगाई के ना डाउन लियानी कने सह जी है खाद जी सह हाँ बैगा च भरने तैयार होनी इस तरीके ने हां दी सॉर्ट विधि ने जड़ी है खाद
0: तैयार हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब इं दसा कि जिया खुंभ की खेती असा दा जेड़ा किसान साथी करदा या फिर करना चाहता है या फिर युवा बेरोजगार साथी ता खुंभ की खेती करने ताए ठंड वाला मौसम बांका रहंदा या फिर गर्मी वाला
2: अगर तक किसान भाई एसी लगाई लै ना तो 12 महीने कर सकता करे अगर जे किसान भाई ने नैचुरल तरीके ने करनी है तो ये 7 महीने ते लेके 7 मार्च-8 अप्रैल तक
0: अच्छा
2: वधिया खेती हो जाती जे ठंडा इलाका है तो थोड़ी होर ज्यादा बढ़ाई सकते कने अगर ये जी खाद है ये जी मशरूम की खेती है इस वास्ते अहें 3 घटक बढ़वा जरूरी है जियां ये पहला पार्ट आई अहां दा खाद बनी है
0: जी
2: दूआ है इसका बीज
0: अच्छा
2: बीज भी अहां किसानां नूं मिलना ते कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर च मिलना खुंभ यूनिट च या सोलन डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है तिथु मिली जाना तुहें बीज दा कतरिया चाहिदा इस दे वास्ते केसिंग मिट्टी हुंदी केटिंग केसिंग मिट्टी जल्लू मतलब हां जी ओ बैगा च भरी दे ते स्पान पाई दे जेड़ा बीज हुंदा जेड़ा खुंभा दा बीज ने बलाई दे कने दिने बैगा जो जेड़ा अंधेरे कमरे च रखी दे इन्हें 15-20 दिन जेड़े अंधेरे कमरे च रखने फिर इस जल्लू सारा ही फंफूदी चिटे हो जाने जल्लू बैग तलू एक होर चीज अहां लैंदे केसिंग मिट्टी हुंदी केसिंग मिट्टी हुंदी इक जेड़ी हां दी मिट्टी हुंदी आम मिट्टी कने इस च 3-4 साल दी गली सड़ी खाद पांदे देसी
0: अच्छा
2: कने क्या कहना जे उस च कोई जे एक एक रेसो लेंदे कने चौथा हिस्सा जेड़ा है तीस च फिर हाँ जेड़ी नारियल दा बुरादा होंदा ना कोर पित खोल दे उस जो सह मिलाई दे सह ताकि जो पानी जो चूसने बधिया रहिंदा ते जलू इस हिस्सा तुहाड़ी है बुथी जेड़ी है पूरी है चिटी हो जानी बैगा च तलू हाँ खोलना कने 1 इंच दी लेर जेड़ी है तीस दी कर देनी ते तीस च फिर सह पिन्ना शुरू हो जानी मशरूम दी आना अच्छा साहब पिन्ना शुरू हो जानी तालू क्या करना तो हाँ एक ध्यान रखना कि संजा ब्यागा जड़ी है फ्रेश हवा देनी
0: अच्छा
2: अगर फ्रेश हवा नहीं देंगे तो तेना है मशरूम नहीं बनने
0: फ्रेश हवा जी है मतलब दरवाजा खोली रखना चाहिए
2: जाली वाला दरवाजा होता ना
0: जी जी
2: ब्यागा भी खोलना संजा भी खोलना दिने बंद रखना केसिंग मिट्टी पाई ये कोई इस कोई ताकत नहीं होंगी ये सिर्फ जी मशरूम जो फंफूंदी थी ना हेठ इसे जो फोर्स करके उपर जो मशरूम लगाने वास्ते जो सह बाहर भेजता इसे
0: जी
2: इसके बाद क्या होंगे कि जड़ा अहां दी केसिंग मिट्टी है सिर्फ अहां सही भिगोनी है जे अगर तुसीं ज्यादा पानी दिता तो सह खुंभ जिहड़ी फफूंदी है सड़ी जानी, कहिंदे घट पाएंगे तो मशरूम सुकी जाना। तो अगर इसे तरीके ने लगांगे कहिंदे अंदर जिहड़ी है जलू जे तुहांदा ये स्पान फैलना है तलू टेंपरेचर चाहिदी 22-25 डिग्री
0: जी जी,
2: ठीक है। कहिंदे जलू जे तुसां दे स्पान फैली आ कहिंदे जलू तुहां मशरूम लगणे तां तलू दे टेंपरेचर तुहां 16-18 डिग्री चाहिदी, घट चाहिदी,
0: घट चाहिदा मतलब
2: तां तुहां दे मशरूम जिहड़े ने सह लगणे। वैसे ते लेडीज वास्ते बड़ा वधिया कम है
0: जी जी,
2: जिहड़ियां घरें अनएम्पलॉयड लेडीज आ ने जां कुछ नहीं कराई आ जां अनएम्पलॉयड स्टूडेंट भी आ जो भी है ना, तिन्हां वास्ते सब ते वधिया कम है ऐ संजावया गा दे काम
0: जी जी
2: दिने होर काम
0: भी। अच्छा इस च इक गल होर दसा डॉक्टर साहब की जियां एक खेती मतलब जी मशरूम की है ये बंद कमरे च ही होंगी है, बंद कमरे च मतलब किस किस तरह की जी सावधानियां हैं जो बरतना चाहिए ने, और इस च मतलब जिया एक टाइम च कितने आदमी जी उस कमरे च जाई सकते हैं या फिर और किना किना जी खास गल्ला के उन्हां दा ध्यान रखना चाहिए।
2: ये जरा मशरूम का काम है ना जी हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर दिखे तो
0: जी जी जी
2: तिथु कुछ ही नहीं जाना देंगे कने बिल्कुल दिखे जिया अजकल कोरोने च मास्क लगाए ना इतू मास्क 24 घंटे लगाना पौंदे
0: जलू कमरे
2: कमरे जाना है कने इसने हां बोलना जीवाणु होंगे सह भी चली जान हो सकता भी किसी को बिमारी लगी जाए, हाथों चाहे ग्लव्स पाने पैर जे जल तुह एंट्री जिथू बनानी दरवाजा जड़ा होना तिथु फार्मेलिन का गोल सह पाना ताकि तुह पैर डुबोई के जुते ही डुबोई के जाना अंदर इन चले जाना अंदर चले जाएंगे कने इस कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है
0: जी जी
2: तो हाँ बोल गए चल भाई मेरे मशरूम दिखी लें तो अज तक तो हाँ मशरूम बढ़िया लगने के कल गोवा तो कोई भी आदमी ज्यादा इस अंदर ना जाए जेड़ा काम करता सह ही अंदर जाए कने बड़ी सावधानी रखनी अगर सावधानी नहीं रखी तो हाँ कुछ हथे नहीं आना कने उइयां अगर ये बड़ी चीज बढ़िया है तो थोड़ी इनकम जड़ी है सह 1 रुपया खर्च किया तो 3 रुपया टिके होने 3 महीने ची
0: जी जी जी
2: कने अगर तो नहीं सावधानी बरती तो है 1 रुपया जो खर्च है भी 0 हो जाना
0: जी। तो डॉक्टर साहब अंत च यह दसा कि खुंभ उत्पादन च बीमारी लगने की भी संभावना रहती है कने कौन कौन बीमारियां लगी सकती है और इन्हों का क्या क्या उपचार है मतलब
2: इस जी खुंभ है एक ही किस्म की वाली खाने वाली बीमारी है पर इस पर भी बीमारी लगी
0: जी।
2: तो बीमारियां 2-4 बीमारियां होंगे इस ग्रीन मोल्ड होंगी फिर इंकी कैप आई जाता फिर ब्रोन मोल्ड होंदा फिर वाइट प्लास्टर मोल्ड होंदा बैट बबल होंदा ड्राई बबल होंदा ये सारियां जी बीमारियां ना अगर जी ग्रीन मोल्ड है अगर ते तुहाड़ी जी है टनल च पाई है ना खाद अगर ते इस च हाई टेंपरेचर लग जाती है या तो इस तुहांदा जी है डंगेनेस है जी है पास्चराइज नहीं हुई मतलब है कंडीशनिंग नहीं हुई तमी से जी है सो तुहां बीमारी आ जानी
0: जी जी,
2: ठीक है। फिर ये होंदा जे ग्रीन मोल्ड लग जाती जी तुहां मैं दसा जी केसिंग मिट्टी बनानी है अगर इस डंगेनेस स्टरलाइज नहीं करगे तो क्या होना तो इस जी सह ये बीमारी आ जानी। तो इस वास्ते क्या करना तो हाँ एक दवा होंगी मैनकोजेब या डायथेन एम्पनिटाली या बेबिस्टिन होंगी डायथेन हो 2 ग्राम पर लीटर बेबिस्टिन मिलती है तो 1 ग्राम पर लीटर गोल बनाना तिथु तीस पर स्प्रे कर देना कने एक और काम करना जिथु बीमारी लगी होंगी मन लिये पैच बीमारी है लगी उपर तो छुरी करनी ना जी है गर्म करनी गिठिए जी गर्म कर ले झड़ी कर देनी मतलब कने कढ़ी देना ना है पैच दे तिथु जी केसिंग मिट्टी नौ ही भरी देनी कने ये जड़ी है मैं तुम्हें दवाई दसा बेबिस्टिन आई गोल
0: डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी तुसा खुंभ उत्पादन दे बारे च बहुत ही बांकी जानकारी के भी असा दे सुनने वाले दिती है ता तुसा दा बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: जी तो किसान साथी अहें खुंभ की जानकारी जी सुनी कने जरूर आशा है कि तुहां इस जानकारी ते लाभ जड़ा से लेना है और इसके बाद अहां फिर चलना लोक जानकार की तरफ।

किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्नै कार्यक्रम किसान बाणी हेतु संपन्न होकर दा हुण सांझो दोनों जदिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियाँ।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइंदी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैन जो एक बारी फिरी ते ट्याले ते राम राम कन्ने मेरे कन्ने अज ट्याले पर साथ दे करदे ने बड़का चाचू जी तुहानू जो भी राम राम
1: राम राम बड़क राम राम पंच जी राम राम और जितने भी किसान बागवान भाई बहन कार्यक्रम सुना कर देने उन्हें सारे जो ही बड़का चाचू तरफा दे राम राम
0: जी। तो बड़का चाचू जी दिखा तो हाँ पिछले दिनों तो साढ़े घर ग्राम बच्चे जड़े से खूब रौनक लगी हुई है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जेड़ा चुनाव का दौर चलिया हा था उस बिच जड़े से अहाँ दे उम्मीदवार घर घर जा करते हैं और अपना अपना जड़ा से जोर अजमाइश लगा करते प्रचार करा करते है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और इस बिच दिखा तो हाँ कई उम्मीदवार ने जड़े से हूँ रिजल्ट भी परिणाम जी तिना दे आए गए कुछ जीती गए कुछ हारी गए। ये तो लोकतंत्र का त्यौहार है इस जो हाँ सारे जो ही रली मिली के मनाना है और जो भी जीते है तेस जो भी आगे बढ़ते हुए जेड़ा से तेना अपने घर ग्राम दे जेड़ा से विकास करना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और इस दे कन्ने कन्ने जेड़े हारी गए तेना जो भी जेड़ा से निराश नहीं होना है आपसी भाईचारा जेड़ा से बनाई रखना अपने ग्राएं बिच और रली मिली के सारे ही सहयोग करी के हाँ जेड़ा से अगे बढ़ना और अपने ग्राएं दा जेड़ा से विकास करना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल कने ठीक ला दे पंच दी तो हाँ की अगर हाँ पिछले 10 दिन गल गल की जाए तो घर ग्रां च बड़ी बड़ी जी रौनक लगी है ना।
0: जी जी
1: और ठीक ला करते कि देखा कि भी सारे रली मिले अहाँ प्रयास करेंगे तो सारा ग्रां का ताई विकास होना है और जेड़ा उम्मीदवार जीत्या और जेड़ा हारिया तो सांजो बोलते ना कि ये चुनावी वेला था
0: जी,
1: है ना।
0: जी।
1: और ये चुनावी वेला मतलब जियाँ कि अगले दिन सांजो बिल्कुल खत्म करके एक भाईचारे हो कि मिली जुली के अपने घर और ग्रां के विकास के बारे सांजो सारे जो ही एकत्रित होना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इस दे कन्ने कन्ने हुण हाँ गल करनी है चेरी पलम खेती दे बारे च। देखा एक फलदार वृक्ष है जेड़ा कि पहाड़ी क्षेत्रां च जेड़ा से उगदा है और ये फल जेड़ा से छोटा गोल और लाल पीले कने बैंगनी रंग दा जेड़ा से होंदा और इस दे फल ताज़ा खाने च जेड़े से खाने दे कन्ने कन्ने हाँ जैम जैली कने होर कई तरह दे खाने दे उत्पाद जेड़े से इस कन्ने बनदे ने है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और ये जड़ा चेरी पलम दा जड़ी खेती है ये हाँ दे समशीतोषण जलवायु जड़ी से इस वास्ते उपयुक्त रहती यानी कि मध्यम क्षेत्र च इस जो हाँ उगाई जड़े से सकते यानी कि 800 ते लेके 2500 मीटर तक दी ऊंचाई तक इस जो हाँ अच्छी तरह उगाई सकते। और इस बिच गल की जाए हिमाचल प्रदेश दी तो कई मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्र जड़े से इस जो हाँ आसानी कन्ने उगाई सकते न। और इस वास्ते हाँ दी जड़ी मिट्टी दी गल करिए जल दी निकासी वाली मिट्टी जड़ी कि दोमट मिट्टी है सबसे अच्छी जड़ी से मन्नी जाती है।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: इस मिट्टी का पीएच मान जड़ा से 5.5 ते लेके 7.5 तक जेड़ा से अच्छा मन्या जाता है। और इस दे पौधे लगाने दा जेड़ा समय रहिंदा है दिसंबर ते फरवरी तक यानी कि जेड़ा साढ़ा सर्दियों वाला मौसम हुंदा उस बिच हाँ इस पौधे जो लगाई सकते। और कन्ने ही पौधे दी दूरी जेड़ी है 6 ते 7 मीटर तक हो सकती है और गड्ढे का आकार जेड़ा से 1 बाई 1 बाई 1 यानी कि गहराई भी इसकी 1 मीटर होनी चौड़ाई भी और लंबाई भी जेड़ी से 1 मीटर हाँ गड्ढे जेड़े से करने और गड्ढे विच अच्छी तरह हाँ जेड़े से सही गोबर दी खाद जेड़ी से देसी मिलाई करी एक अच्छी मिट्टी जेड़ी से उस खड्डे दी तैयार करनी है ना।
1: बिल्कुल कने देखा कि अगर हाँ चेरी और पलम की खेती बाड़ी करते हैं ना
0: जी
1: तो सांजो जेड़े अपने विशेषज्ञ ने उन्हें सोगी भी सलाह मशवरा करना चाहिए और अपनी जेड़ी जलवायु की जेड़ी भूगोलिक जेड़ी परिस्थिति उसके बारे में भी अवगत कराना चाहिए कि असा इस इलाके च या इस क्षेत्र च जेड़ी खेती बाड़ी कहने भी करना चाह करते हैं
0: जी
1: तो मतलब सलाह मशवरा है कि भाई कौन दिया बीज लगाना है किया लगानी है पूरी मतलब ब्यौरा के भी सांजो जेड़े विशेषज्ञ ने सलाह मशवरा करके हाँ इसकी खेती कहने भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इस बिच हाँ प्रति पौधे खाद और उर्वरक की गल करिए 20 ते 25 किलोग्राम खाद या गोबर दी खाद देसी जड़ी होंगी तीस जो हाँ प्रति वर्ष जेड़े से दे सकते इस पौधे जो और पौधे दी जड़ी आयु है उसके अनुसार जेड़े से नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम दी मात्रा भी जड़ी से हाँ इस बिच पाई सकते हैं।
1: जी जी
0: कन्ने ही गल की जाए सिंचाई दी तो वर्षा आधारित क्षेत्र बिच जेड़े से कम इसकी आवश्यकता होंगी और गर्मियों जेड़े से 10 ते 15 दिन के अंतराल पर अगर हाँ इस दे पौधे जो सिंचाई देंदे न सेड़ लगाते हैं तो इसकी उत्पादन क्षमता जेड़ी से बढ़ी आती है। इस दे कन्ने ही इस पौधे जो 3 ते 4 वर्ष दे विच जेड़ा से फल देना संजो शुरू करी दा और पहले ते विकसित जेड़े पेड़ होंदे से 20 ते 25 किलोग्राम तक फल जेड़ा से हर साल सांझू जिहड़ा सा देई सकदा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और साढ़े क्षेत्र हिमाचल प्रदेश दे जिहड़े जिला कांगड़ा होई आ, मंडी है, कुल्लू है, शिमला है, इत्थों जिहड़ी से चेरी पलम दी खेती जिहड़ी से अहां करी सकदे न। और ज़्यादा जानकारी ते अहां जिहड़े से अपने बागवानी अधिकारी कन्ने जिहड़े से संपर्क करी के उत्थों जिहड़े से पूरी जानकारी लेकर ही इस पौधे दी जिहड़ी से खेतीबाड़ी अहां करी सकदे अपने क्षेत्र विच।
1: बिल्कुल। तो किसान साथी गल्ला अगे भी जा रहे हैं पर उन्हें शामिल करना एक प्यारा दे लोकगीत, तो सुनते रली मिलिए लोकगीत
0: जी।

0: जी तक किसान साथी है लहरू राम संख्यांदी आवाज च प्यारा दिया लोकगीत सुनिया।
1: जी
0: कने
1: जी
0: आशा करनी कि सारे पसंद भी आए हो और इसके बाद हाँ फिर दे चलना जानकारी दी तरफ और जानकारी च दिखा तो हाँ हाँ पहले भी गल करा करते हैं खुंब उत्पादन दे बारे च
1: जी जी
0: है
1: जी
0: ना
1: जी
0: जी। ता इस विच हाँ दे विच जेड़े ऐसे ताज़ा जानकारी ये है कि खुंब उत्पादन दे संबंधित एक नई जड़ी किस्म है साड़ा खुंब अनुसंधान एवं निदेशालय सोलन के वैज्ञानिकों ने जी इस समर वटन मशरूम की एक नई ब्राउन किस्म जी इसे विकसित की
1: बिल्कुल दिखा पंच जी की असा जेड़ा वैज्ञानिक है शोधकर्ता है ना,
0: जी जी
1: रात दिन मतलब से नई नई किस्म जो शोध के भी करता रहता है,
0: हाँ
1: ताकि असा जेड़ा किसान साथी के भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चाहे से खेती बाड़ी की गल की जाए या फिर पशु पालन की गल की जाए या फिर और जेड़े उत्पाद उन्होंने गल की जाए ना, तो
0: जी
1: तिना च एक जी तुम गल करा कर दे खुंब उत्पादन के बारे च।
0: हाँ जी हाँ जी। तो इस विच जिहड़ी ब्राउन मशरूम है ये उच्चे तापमान फलने फूलने वाली जिहड़ी है सक्षम है और बल्कि अहाँ दे आम सफेद बट जिहड़ी आम मशरूम होंदी सै सफेद होंदी दिखने च है ना
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: इस उस दे मुकाबले जिहड़ी इसे ज़्यादा जिहड़ी गर्मी जिहड़ी इसे सहन कर सकती है यानी कि ज़्यादा देर तक जिहड़ी इसे ये ब्राउन मशरूम जिहड़ी इसे टिकी सकती है।
1: बिल्कुल
0: इन दिनों च मशरूम की जी इस बाजार में काफ़ी मांग है और इसकी मांग जो दिखते हुए जोड़ा सा इसकी जी बाजारीकरण है जोड़ा अहाँ आसानी कने करी सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और इसकी खास गल यही है कि इसका रंग जोड़ा सा भूरा है और इसकी जी सेल्फ लाइफ है से सफेद मशरूम से जी से दुगना है यानी कि अहाँ गलाई सकते कि आम तौर पर सफेद जी मशरूम है तो इसको उगाने वास्ते 14 से 18 डिग्री तक का जोड़ा सा तापमान चाहिए पर अहाँ का जोड़ा ये ब्राउन मशरूम है इस जो जोड़ा से अहाँ 25 से 26 डिग्री तापमान पर भी जोड़े से आसानी करने उगाई सकते साढ़े किसान भाई तो यानी कि कुल मिलाई के जोड़े से ये नई प्रजाति जड़ी से अहाँ इस जो आसानी करने एक अच्छे तापमान च भी जोड़े से उगाई सकते हैं गर्म तापमान च भी उगाई सकते हैं और इस खोज करने मशरूम उत्पादक जो जोड़े से दो तरह के जोड़े से लाभ होने हैं एक तो इस दे उगाने च जड़ा सा भारी भरकम जड़ा एयर कंडीशनिंग दा या कूलिंग सिस्टम आ किसान भाई लगाते हैं से
1: जी
0: तीन दा
1: जी
0: खर्च जड़ा सा घटी जाना है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और कन्ने कन्ने ही बाजार च मांग और गुणवत्ता जो दिखते हुए साढ़े किसान भाई जड़े से बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है यानी कि हाँ इस मशरूम जो काफ़ी समय तक जड़े से सुरक्षित रखी सकते हैं और जलू मांग जड़े से बाजार च ज़्यादा होंगी है और उसके अनुसार तेना का मुल भी ज़्यादा होंगे है ना
1: जी
0: तो
1: जी
0: तलू जड़े से आसानी करने अपने किसान भाई जड़े से इस मशरूम जो बेची सकते और सफेद बटर मशरूम जी से गर्मी के मौसम च बड़ी जल्दी खराब हो जाती है जिससे व्यापारी और साढ़े जड़े किसान भाई तिना जो ज़्यादा नुकसान उठाना पैंता है ना
1: जी जी
0: कने जी ब्राउन बटन मशरूम है इस इदी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होने के कारण जेडे से इस दे परिवहन च भी ये सुरक्षित रहती यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने जो भी आसानी होती है और इस जो हाँ अपने मांग दे अनुसार और दाम दे अनुसार आसानी करने बेच सकते यानी कि बोलने का मतलब है कि चलो इसकी मांग ज़्यादा होगी और इधर दाम ज़्यादा होगा तलू हाँ इस जो आसानी करने बेची करी एक अच्छा मुनाफा जड़ा से कमाई सकते हैं तो कुल मिलाई के जड़ा से ये साड़ा जड़ा खुंब अनुसंधान निदेशालय उन्होंने वैज्ञानिकों ने बड़ी अच्छी जी इसे उन्होंने खोज की है कि ये जड़ा ब्राउन किस्म का विकसित मशरूम विकसित किया इस जो हाँ जड़े से साढ़े जे किसान भाई ने बागवान भाई ने उन्होंने वास्ते बड़े फायदेमंद है और इसका बाजारीकरण आसानी करने करी सकते हैं।
1: बिल्कुल तो बड़ी बाकी जी खुंब की जानकारी तो हाँ दी पंच साहब कने किसान साथियों फिर दे हाँ शामिल करना एक प्यारा दिया लोकगीत सुनते ने लोकगीत।
0: जी

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कने कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया एतु संपन्न होकर दा कार्यक्रम च तकनीकी सहयोगी अंकित धीमान प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह उन अपने ट्रायल जस्ट से बड़का जाचो
1: कने पंच जो दिया अनुमति अच्छा जी।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का
1: खादर
0: धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल

शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने पर बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: You need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujjwala or Sakshat Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment, and that self-employment made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: राइट शुभ मैं देखिए अभी शुभ मैंने सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट की बात की. स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000+ करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है. कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान. ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है.
1: जी,
2: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे. जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके हैं किसानों की, तीसरा यूथ आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये चार स्तंभ हैं, जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला एक साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पोर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी।
1: जी,
2: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार, स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने नकारा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, नगर निगमों के चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारणों पर मंथन करेगी कांग्रेस। और गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए 38 पदक। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वगणना अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान आज से 15 जून तक प्रदेश भर में संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक डिजिटल पोर्टल पर स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेशवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश व प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। राज्यपाल ने कहा कि जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वगणना प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।
5: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे देश का एक सुंदर पहाड़ी राज्य है, जो कि इस प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण मदद करेगी। जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस बार स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रदेशवासी जनगणना 2027 के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें।
4: इस दौरान हिमाचल प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया एनसीसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन दल को कुल्लू के माउंट देव टिब्बा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभर से चुने गए 24 एनसीसी कैडेट्स का ये दल 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए पीर पंजाल रेंज जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करते हैं। कविंद्र गुप्ता ने सभी कैडेट्स को सुरक्षित और सफल आरोहण की शुभकामनाएं भी दी।
6: मुझे पूरा विश्वास है कि ये कैडेट जब इस सारे ट्रेनिंग से गुजरेंगे तो आने वाले समय में ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक असर बनेंगे। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो मेहनत, इनकी जो लगन, जो इनकी तपस्या रहेगी, जो देशभक्ति की भावना, वो अपने आप में एक जो विकसित भारत 2047 का हमारा सपना है उसको भी आगे बढ़ाएगी।
4: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं और इनसे उत्पन्न गंभीर खतरों के दृष्टिगत राज्य सरकार सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सरकार ने 2688 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी HP रेडी परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना इस वर्ष जनवरी से नवंबर 2030 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित है और प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पिछले 3 वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत केंद्रित शासन से प्रतिरोधी केंद्रित प्रशासन की ओर बढ़ने पर भी बल दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनाव परिणामों में जनता ने भाजपा को अपना भरपूर समर्थन दिया है और कांग्रेस की करारी हार हुई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटियों और मुख्यमंत्री की बात पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों में अपनी हार का पहले से अंदेशा था, इसीलिए वे इन चुनावों को टालना चाहते थे। उन्होंने राज्य सरकार को साजिश करने के बजाय जनहित में निर्णय लेने और केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही आर्थिक सहायता को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने की सलाह भी दी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 4 में से 3 नगर निगमों में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने माना कि इन चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके कारणों पर पार्टी स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पालमपुर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं।
7: ये चुनाव खास करके लोकल फैक्टर्स के ऊपर लड़े जाते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं जो जनादेश मिला है वो वहाँ के लोगों को मिला है, स्थानीय निकाय के लोगों को मिला है, स्थानीय प्रधानों को मिला है, उप प्रधानों को मिला है, BDC मेंबर्स को मिला है, जिला परिषद मेंबर्स को मिला है। उस पर हम मिलकर आने वाले समय में कार्य करेंगे और हर जगहों पे जहाँ पे समितियां बननी है, जहाँ पे जिला परिषद बनना है, उस पर पूरा प्रयास भी किया जाएगा कमेटीज बनाने का और मिलकर हम फिर आगे कार्य आने वाले समय में करेंगे।
4: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कमलेश कुमार पंत ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। वर्ष 1993 बैच के उत्तराखंड मूल के कमलेश कुमार पंत के पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। के पंत ने कहा कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकेगा। असम के गुवाहाटी में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 38 पदकों पर कब्जा जमाया है। इनमें 12 स्वर्ण, 13 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय ग्रैपलिंग संघ के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने खिलाड़ियों की इस अद्भुत सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता राज्य के युवाओं की कड़ी मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। पंचायती राज संस्थाओं के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में जनादेश प्राप्त करने वाले हमीरपुर जिले की बगवाड़ा, गवारडू और कराह पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से भेंट की। इस अवसर पर प्रोफेसर धूमल ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतें विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति देने, जन समस्याओं के त्वरित समाधान और समाज के प्रत्येक वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करना आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत स्वगणना अभियान का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत सक्षम व प्रतिरोधी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार प्रयासरत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार, स्थानीय निकाय व नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की झूठी गारंटियों को जनता ने नकारा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, नगर निगमों के चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारणों पर मंथन करेगी कांग्रेस। और गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए 38 पदक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर बाद विविध संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, सब रस। FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। और कार्यक्रम में लीजिए, सबसे पहले सुनिए सतिंदर सरताज का गाया हुआ ये पंजाबी गीत।

आएगी गली से सारंगी की आवाज, तो तू चल के नहीं जाएगी, उधर खींची जाएगी। वहां बच्चे नाच रहे होंगे मस्त मलंग उसके चारों ओर, होंठ कांप जाएंगे, मुट्ठियां भींची जाएंगी। वो आगे बढ़ जाएगा गाता, किसी से मांगेगा कुछ भी नहीं। तुम पूछोगे कुछ चाहिए क्या, वो चाहेगा कुछ भी नहीं।

बजे तुम उठोगी बिना आहट के खिड़की पे जाओगी, एकदम से लगेगा कि कुछ कमी सी है कहीं। तुम जुल्फें खोलोगी तो वहां नहीं गिरेंगी जहां तुम चाहोगी।

0: पायल जिसे उसने पहना तो था, फिर उतार कर कहा कि कोई और दिखाओ। दुकानदार ने दो चार बार कहा तो था कि मैडम ये चीज नहीं मिलेगी, बाजार घूम आओ।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रिजवान अनवर को।

श्रोताओं, ये पंजाबी गीत आपने सुना ज्योति तंगरी का गाया हुआ। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशकान।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए केसरी फिल्म से ये देशभक्ति गीत। इस देशभक्ति गीत को गाया है सुखविंदर सिंह ने।

0: ये देशभक्ति गीत आपने सुना द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से, और इस देशभक्ति गीत को गाया था कार्तिक रकीब और सुखविंदर सिंह ने। एफएम बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता

भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
7: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And Orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Lian held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
9: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
8: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
9: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway.
8: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President U Min Aung Lan at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Lian on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply

श्रोता और रवि ने अपने करियर की शुरुआत संघर्ष के साथ की थी। शुरुआती दिनों में वे बिजली मिस्त्री यानी कि इलेक्ट्रीशियन का काम भी करते थे, लेकिन संगीत के प्रति लगाव उन्हें मुंबई ले आया। बाद में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया।

0: श्रोताओं, रवि की प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो उनमें चौदहवीं का चांद, वक्त, घराना, हमराज, दो बदन, नील कमल, निकाहा और खानदान शामिल है। उनके कुछ अमर गीत चौदहवीं का चांद हो, बाबुल की दुआएं लेती जा, आगे भी जाने न तू, तुम अगर साथ देने का वादा करो, दिल के अरमां आंसुओं बह गए। श्रोताओं, रवि साहब की धुनों की खासियत सादगी और मधुरता थी। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर और आशा भोसले जैसे गायकों के साथ कई यादगार गीत गाए, माफ़ कीजिए, कई यादगार गीत दिए। उन्हें 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बाद में उन्होंने मलयालम फिल्मों में भी बॉम्बे रवि नाम से संगीत दिया और वहां भी काफ़ी सफलता हासिल की। श्रोताओं, 7 मार्च 2012 को मुंबई में उनका निधन हो गया और उनका संगीत आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनो।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं,

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए राजकुमार को।

श्रोताओं, ये लोकगीत आपने सुना मान सिंह का गाया हुआ। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे, जिसमें आप श्रोता हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 01892224391। तो रात्रि 10 बजे आप हमें कॉल कीजिए और अपनी पसंदीदा फिल्मों के गीत सुनिए। कार्यक्रम में आगे लीजिए, सुनिए शांति बिष्ट को।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम, आपकी पसंद गीत हमारे, और श्रोता हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्टूडियोज़ का नंबर है 01892224391, 01892224391, और हमारा हम आपको एक बार बता दें कि जो फिल्में हमने रखी हैं उनके नाम फिल्में हैं गाइड, ही रांझा, जब प्यार किसी से होता है, जानवर, लाल बंगला, मेरा गांव मेरा देश, मिली, नया दौर, नील कमल, पड़ोसन, प्रेम पुजारी, प्रोफेसर, रोटी, सफ़र, शगुन, वक्त और ये गुलिस्ता हमारा। तो लेते हैं कार्यक्रम की पहली फ़ोन कॉल। हेलो,
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी जिला पूर्व छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: जी सर, बता रहा हूँ सर, फिल्म का नाम है क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन जी का फिल्म का गाना है, बरसात की एक रात।
0: सर आपको एक बात बता दें, फिल्में हमने यहाँ रखी हुई हैं, उनमें से आपको चूज करना, मैं पहले नाम बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ
1: जी।
0: गाइड, ही रांझा, जब प्यार किसी से होता है, जानवर, लाल बंगला, मेरा गांव मेरा देश, मिली, नया दौर, नील कमल, पड़ोसन, प्रेम पुजारी, प्रोफेसर, रोटी, सफ़र, शगुन, वक्त और ये गुलिस्तां हमारा
1: जी। प्रेम पुजारी के गाने फूलों के रंग से, दिल की कलम से, गाय किशोर कुमार देवानंद जी का फिल्म
0: जी। और आप बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं CCL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ
0: जी जी।
1: और नौकरी फील्ड में भी आपके कार्यक्रम में मंगलवार को भी जुड़ता हूँ सुबह शायद 9 बजे, तो अभी कुछ दिन से अभी सुबह वाला मैं नहीं हो पा रहा है, मैं सुन रहा हूँ सर
0: जी जी
1: जी।
0: कार्यक्रम में
1: हाँ सर, क्या बोल सर, कार्यक्रम में
0: आप बताइए क्या बोल रहे हैं
1: सर। हाँ, ये बोल रहा था कि सुबह टाइम पे लाइव वाला कार्यक्रम में कभी कभी होता है सर, अभी
0: जी जी जी। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका धन्यवाद। सुनवा रहे हैं प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत।
1: फोन सामने किए सर, धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताइए
1: हाँ
0: अपना।
1: जी जी सर जी, नमस्कार
0: नमस्कार जी।
1: जी। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव गट्टा से चांदराम बोल रहा हूँ सर जी। धन्यवाद
0: चांदराम जी मंडी से बोल रहे हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए
1: सर जी।
0: बताइए मंडी के बारे में और क्या करते हैं आप।
1: जी मैं एक खेती बाड़ी के काम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करता हूँ।
0: जी, खेती
1: हाँ
0: बाड़ी
1: जी।
0: किस
1: और
0: प्रकार
1: मैं
0: की।
1: सर टमाटर की फसल की लगा रखी है आजकल हमने। हाँ
0: जी,
1: जी
0: तो
1: सर।
0: बताइए फिल्म का नाम बताइए।
1: फिल्म में मैंने सुनी, अभी ट्यून किया मैंने आपका रेडियो
0: जी, फिल्में हैं गाइड, हीर रांझा, जब प्यार किसी से होता
1: सर।
0: है।
1: हीर रांझा फिल्म का सुना दीजिए। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
0: जी, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
1: सर मैं
0: जी
1: जो दोस्त है मेरे
0: जी
1: अभी अबू धाबी जो दुबई में पढ़ता है सर,
0: जी जी
1: वहाँ से सुन पा रहे हैं आपको। संजय कुमार जी
0: जी जी और
1: गांव सपुरवा से सुन पा रहे हैं। दत्तराम चेतराम जी।
0: जी,
1: जी जी
0: तो ये सभी सुन रहे हैं और हमें खुशी है कि दुबई में भी हमारी
1: जी
0: आवाज़
1: जी
0: आ रही है, हमारे
1: जी जी
0: स्टेशन
1: वो
0: को
1: अभी
0: वहाँ
1: फोन
0: सुना
1: आया था मेरे
0: जाता
1: को
0: है।
1: भाई का, तो मैंने फोन किया आपको। उसने याद किया आपको भी, आप फोन करिए चांद्राम जी धर्मशाला में।
0: जी, ठीक है जी। कार्यक्रम में
1: जी
0: आपने
1: जी
0: फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खुशी हुई आपके साथ बात करके।
1: शुक्रिया सर। धन्यवाद
0: सुनवा रहे
1: आपका
0: हैं
1: भी,
0: हीर
1: आपने हमारी कॉल
0: रांझा।
1: को लिया सर।
0: जी,
1: धन्यवाद।
0: हीर रांझा फिल्म से ये गीत सुनिए।

0: आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। हेलो हेलो,
1: हेलो गौरव राय जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और सुनाइए, कैसे हैं
1: आप? क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया बढ़िया।
1: देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से
0: जी,
1: एक महीना भर से कार्यक्रम जो फोन इन लाइव फोन कर कार्यक्रम से बंद थे
0: जी,
1: सब फिर से चालू हो गए तो बहुत बढ़िया हो गया
0: जी। जी, और क्या चल रहा है आजकल? फ़ोन लाइन कट गई है और सिग्नल में रहकर थोड़ा सा बातचीत करें और हमारे ये पुराने श्रोता हैं। आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मैं साहिल बोल रहा हूँ धर्मशाला से, दारनू में।
0: दारनू से? पहले फिल्म का नाम बता दीजिए।
2: मेरा गांव मेरा देश।
0: मेरा गांव मेरा देश। और साहिल जी, क्या करते हैं आप?
2: मैं तो अभी बस कॉलेज स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर
0: जी। क्या सब्जेक्ट हैं आपके?
2: मेरा बीएससी
0: जी। जी, और क्या करना चाहते हैं आगे?
2: मैं अपनी मेडिकल लाइन को परस्यू करना चाहता हूँ।
0: जी जी, चलो बढ़िया है। तो सुनवाते हैं आपको मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत।
2: जी,
0: कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका धन्यवाद।

0: हेलो। हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? नाम बताइए
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं।
0: जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और फिल्म का नाम बता दीजिए पहले।
1: फिल्म का नाम है पड़ोसन,
0: पड़ोसन। और क्या करते हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। मैं
0: मध्य प्रदेश से। क्या बात है। और क्या करते हैं आप? फ़ोन लाइन फिर से कट चुकी है। और हमारा श्रोताओं से निवेदन रहेगा कि हमेशा सिग्नल में रहकर बात करें। आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद, गीत हमारे। हेलो हेलो हेलो हेलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है जी। हमारा श्रोताओं से निवेदन है कि हमेशा जब भी हमें कॉल करें तो सिग्नल में रहकर ही फ़ोन करें। लेते हैं कार्यक्रम की एक और फ़ोन कॉल। हेलो।
1: नमस्कार सर जी,
0: नमस्कार जी। फिल्म का नाम बताओ पहले
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: जी। जम्मू से केशव शर्मा जी, स्वागत है। फिल्म का नाम बता दीजिए पहले।
1: पर फिल्में सुनी नहीं है आप?
0: फिल्म है गाइड, जब प्यार किससे होता है, जानवर लाल
1: गाड़ी
0: बंगला
1: का सुना दो,
0: जी।
1: लता
0: जी
1: मंगेशकर का गाना हुआ, खींच के जे आंचल,
0: जी और बताइए अब
1: कांटों से खींच के जे आंचल।
0: जी। और बताइए क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल
1: अच्छा,
0: रहा
1: मैं
0: है
1: रिटायर्ड हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो
0: जी।
1: मुझे तकरीबन 5 साल हो गए रिटायर हुए। तो
0: जी
1: आजकल घर का काम देखते हैं जी, थोड़ी
0: जी जी बहुत
1: जमीन
0: बढ़िया।
1: है तो प्लाट शाट बनाए हुए हैं।
0: और गर्मी कैसी पड़ रही है
1: गर्मी सर बहुत है, अब कल बारिश हुई थी कल सुबह, तो
0: जी?
1: कल आज आज गर्मी थी, कल मौसम ठीक रहा।
0: बढ़िया बढ़िया। तो
1: तो साथ में साथी हैं सर जी, मेरा दोस्त है कि यूपी से बेजे पांडे जी हैं,
0: जी
1: और कठुआ गुजरू नगरोटा से हमारे मास्टर जी हैं विद्या रतन शर्मा जी,
0: जी
1: मैडम है मेरी श्रीमती सुषमा रानी, पति हैं मेरे अंशु शर्मा है, साक्षी शर्मा है, भाई मेरा सतपाल शर्मा है।
0: जी जी कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद। और आप पहले भी फ़ोन करते हैं हमें शायद।
1: हाँ सर जी, करते रहते हैं आप सर जी। एजुकेशन से डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तो तकरीबन हर जगह रेडियो स्टेशन पे लगाते रहते हैं फोन है जी। पचवंजा
0: जी जी
1: साल हो गए सर जी मुझे रेडियो सुनते हुए जी,
0: जी बहुत ही बढ़िया बात है। तो सुनवा
1: बहुत
0: रहे
1: देर हो
0: हैं
1: गई है, तो
0: जी। सुन
1: शौक है सर जी गाने सुनने का, पता नहीं क्या बात है, घर वाले भी नाराज होते हैं।
0: नहीं, गाना सुनना तो, और रेडियो में तो गाने भी अच्छे आते हैं
1: हाँ हाँ सर जी, गाने तो अच्छे मिलते हैं सुनने में, नए भी मिलते हैं, पुराने भी मिलते हैं,
0: जी
1: हर
0: जी
1: तरह के गाने मिलते हैं जी
0: जी और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है
1: जी
0: जी।
1: जी
0: तो सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म से आपको ये गीत।
1: ओके सर जी, थैंक यू।

0: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं और आप सुन रहे हैं संजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार। फिल्म का नाम बता दीजिए पहले।
1: फिल्म तो आप कोई भी गाना सुना दो। और आज मैंने बहुत खुशी, आज मुझे मैंने आपके प्रोग्राम में खास मौके पे कॉल किया। आज जो है विशेष दिन भी है
0: जी, बताइए
1: जी। तो सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी धर्मशाला की टीम को आदिवास शुभकामनाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके धर्मशाला के माध्यम से हमें अपने बुजुर्गों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग जो है हमारे रीढ़ की हड्डी है। और खासकर जो है हमारे माता पिता हैं, वो हमें चलना बचपन में बोलना चलना सिखाते, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं।
0: जी
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: नाम
1: जी
0: बता दीजिए अपना, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
0: कोटखाई। राकेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है और आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी जी जी काफी दिनों के बाद प्रोग्राम चालू हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम
0: जी
1: से
0: जी
1: जुड़ के।
0: आपसे बात करके अच्छा लगा। और बताइए कुछ।
1: बस ये है कि अभी आजकल हमारी इधर बारिश हो रही है, और क्या बोलते लगातार, और थोड़ी सी गर्मी से जो है हमारी रात हो गई है,
0: जी
1: रात मिल गई है। और हमारे जो सेब के जो थोड़े नुकसान भी दिख रहा है, और थोड़े थोड़े सैंपल भी आगे फूलों के ऐसे सेब के पेड़ की।
0: जी जी तो आप भी
1: जी
0: सेब लगाते हैं?
1: जी हमारे गांव में भी सेब है।
0: जी,
1: जी जी जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनवा रहे हैं आपको रोटी फिल्म से ये गीत।
1: जी जी बिल्कुल जी, सुना दीजिए। धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी?
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं,
0: जी, कार्यक्रम में फ़ोन किया आपने, आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम अकबरपुर, तहसील सिवान, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। फिल्म
0: मध्य प्रदेश से। और फिल्म का नाम बताइए आप पहले।
1: का नाम है जानवर।
0: जानवर। और क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं जी, अभी नेटवर्क फुल मिल रहा है, अभी बीच में फोन कट गया हमारा।
0: हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है। मैं सोच भी रहा था फ़ोन कट जाता सर पहाड़ों में।
1: जी क्या है, असल में देखो, मैंने सोता फोन लगाते हैं, मैंने से फोन कट जाता है तो बहुत दिक्कत होती है।
0: जी, तो चलो आपका फ़ोन दोबारा लग गया, अच्छी बात है। तो जानवर फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं आप,
1: जी,
0: तो सुनवाते हैं आपको जानवर फिल्म से ये गीत।
1: धन्यवाद आप।
0: ये आपने फ़ोन किया, आपका भी धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे, और हमारा श्रोताओं से निवेदन है कि वो जब भी फ़ोन करें सिग्नल में रहकर बात करें। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी बोलिए सर, नाम
1: जी।
0: अपना।
1: भैया योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। लिस्ट
0: जी पहले फिल्म का नाम बता दीजिए।
1: एक दो बता देंगे भैया।
0: जब प्यार किसी से होता है, लाल बंगला, मिली, नया दौर, नीलकमल, पड़ोसन, प्रोफेसर, सफ़र, शगुन, वक्त और ये गुलिस्तां हमारा।
1: नया दौर से कोई भी गीत सुनवा देंगे।
0: जी आप बताइए योगेश जी अपने बारे में।
1: हमारा खेती बाड़ी का मूल काम है भैया
0: जी,
1: जी।
0: कौन सी मतलब क्या उगाते हैं आप?
1: अभी फिलहाल गर्मी में खाली रहते हैं भैया, और बरसात के समय धान, और उसके बाद धान के बाद गेहूं
0: जी
1: जी।
0: जी अच्छा लगा आपने फ़ोन किया। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बेमेतरा छत्तीसगढ़ जी।
0: छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में आपने फ़ोन, पहले भी मैं छत्तीसगढ़ से फ़ोन आया था।
1: जी, हम तो लगभग देश भर में फोन करते हैं भैया।
0: जी, नहीं किसी और का आया था छत्तीसगढ़ से ना।
1: अच्छा
0: जी
1: जी,
0: जी
1: धन्यवाद।
0: तो सुनवा रहे हैं आपको नया दौर फिल्म से ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ जी गौरव जी, मेरा फोन कट गया था।
0: जी
1: पहले मैं
0: जी
1: फिल्म का नाम बता देता हूँ, पड़ोसन फिल्म है
0: पड़ोसन
1: और
0: जी
1: किशोर
0: बता।
1: कुमार, मन्ना डे और महमूद के ऊपर जो फिल्म फिल्माया गया है उनकी आवाज है। तो एक चतुर नहार,
0: जी
1: ये
0: जी
1: गाना सुना
0: बिल्कुल
1: दूंगा।
0: बिल्कुल। और बड़े दिनों बाद फोन किया आपने, कुछ बताइए।
1: बात जी ठीक ठाक है। मौसम जो है वो मौसम में तब्दीली आ गई है।
0: जी
1: गर्मी
0: अब
1: तो बहुत है लेकिन अब क्या करना, प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ता है।
0: जी
1: और
0: जी
1: फसल चक्कर भी जो है वो हो रहा है। अब धान की बुआई रुपाई हो रही है,
0: जी बिल्कुल
1: उसके बाद मक्की की भी फसल जो है उसकी भी बिजाई हो रही है, और कुछ दालों की वो भी चलता रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो सुनवाते हैं पड़ोसन फिल्म से आपको ये गीत।
1: ठीक है जी, धन्यवाद गौरव जी।

0: ये घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना का
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये भूसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर। लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: जी लोकेंद्र जी, आपका स्वागत है। फिल्म का नाम बता दीजिए पहले।
1: सर जी, मैंने अभी अभी ट्यून किया है, मुझे फिल्मों के नाम अभी मालूम नहीं है। अभी अभी ट्यून करा है मैंने, सैलून का काम है मेरा, दुकान से
0: जी
1: आके अभी ट्यून
0: जी
1: किया
0: हम
1: सर।
0: नाम बता देते हैं। शगुन वक्त ये गुलिस्ता हमारा सफ़र, प्रोफेसर नीलकमल मिली
1: सफर का सर, सफर का।
0: सफर का। और क्या क्या? अच्छा, सैलून का काम है आपका। और
1: हाँ
0: कैसा है
1: सर,
0: मौसम वहाँ?
1: मौसम सर आज बिल्कुल खुशनुमा मौसम हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आज कूलर की बजाय पंखा ही चलाना पड़ेगा केवल।
0: जी आज क्या सैलून में है इस टाइम?
1: नहीं अभी घर आ जाते हैं, 10 बजे के बाद में घर आ जाते हैं,
0: जी।
1: और अभी घर पर आ गया हूँ तो आज थोड़ा सा दोपहर में भी हल्की बारिश हुई है, शाम के समय में भी हुई है, और
0: जी
1: अभी रात को अभी 12 बजे के समथिंग, मतलब 11 बजे के अभी दुकान से जब आ रहा था तब हल्के छींटे आए थे, मौसम खुशनुमा बना हुआ है बिल्कुल सर।
0: जी कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया और आपको सुनवा रहे हैं सफ़र फिल्म से ये गीत।
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी आपने भी फ़ोन किया, आपका भी धन्यवाद।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, फिल्म का नाम बता दीजिए, समय कम है। हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, फिल्म का नाम बता दीजिए। हेलो
1: हेलो।
0: इनकी आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी, तो कार्यक्रम में जो है कि समय भी कम है, तो आपको सुनवाते हैं अपनी पसंद से ये की।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म लाल बंगला से, जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने। और पिछले कल आपको हम सूचित करते हैं कि सुमन कल्याणपुर का निधन भी हुआ है। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर का ये गीत फिल्म लाल बंगला से, और ये गीत हमारी तरफ से सुमन कल्याणपुर जी को श्रद्धांजलि।

0: FM 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade,